मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि तदनुसार 7 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं कुछ पलों में हिंदी समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी

0: भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं देश वंदना से और सुनते हैं समूह स्वरों में मैथिली शरण गुप्त की रचना।

गूंजे जय ध्वनि से आसमान समूह स्वर में अभी आपने मैथिली शरण गुप्त की रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में गोस्वामी तुलसीदास की रचना। संगीत शेखर कल्याण का है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं अलका याग्निक के स्वर में कृष्ण भजन। शब्द रचना श्याम राज की है और संगीत ईरा रोशन का है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ ही पलों में प्रकाश किरण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: धर्म ग्रंथों से पाठ, इसमें सुनिए भर्तृहरि के वैराग्य शतक से पाठ।
1: भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता।

ना हमने विषयों को भोगा नहीं, उल्टे विषयों ने ही हमको भोग दिया। हमने तप नहीं किया, बल्कि तप ने ही हमें तपा दिया। हमने समय नहीं बिताया, किंतु समय ने ही हमें नष्ट कर दिया। इतना होने पर भी तृष्णा हमारी कम नहीं हुई, बल्कि हम वृद्ध हो गए। क्षान्तुम् न क्षमया गृहोचित सुखम् त्यक्तं न संतोषतः सोढ़ा दुस्सह शीतवात तपन क्लेशान तप्तं तपः ज्ञातं वित्तमहर्निशं नियमित प्राणैर्न संभो पदं तत्तत् कर्म कृतं यदेव मुनिभिः तैस्तैफलैर्वञ्चितम्। क्षमा किया किंतु हमने असक्त होकर संसार का सुख छोड़ा, तब जब हम विवश हो गए। सर्दी गर्मी आदि सहन की किंतु तप न किया। धन का ध्यान किया किंतु भगवान का कभी ध्यान नहीं किया। हमने कर्म तो वो किया जो मुनियों द्वारा किए जाते हैं, किंतु हम फलों से हमेशा वंचित रहे। वलिभिर्मुखमाक्रांतम् पलितैरंकितं शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। मुंह में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल पक गए और अंग शिथिल हो गए। किंतु तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो अब भी युवा होती जा रही है। येनैवाम्बरखण्डेन संवीतो निशिचन्द्रमाः तेनैव च दिवाभानुः अहो दौर्गत्यमेतयोः। एक ही आकाश को नापने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों भ्रमण करते हैं और दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, किंतु कोई भी इस आकाश को नापने में सफल नहीं हुआ। अवश्यम या तारश्चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न मनो यत् स्वयममून् व्रजन्तः स्वातन्त्र्याद् अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा इहेते श्रम सुखमनन्तं विदधति। जब यह संचित विषय अंत में छूट ही जाएगा तो मनुष्य उसे प्रथम ही क्यों नहीं त्याग देता? क्योंकि जब अपने से ही छूट जाएगा तो हमें दुख होगा, और जब स्वयं ही उसे हम छोड़ देंगे तो हमें महासुख की प्राप्ति होगी। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा।

0: भयम्। वे कवि सबसे श्रेष्ठ हैं जो अनेक रसों में निष्णात हैं, ऐसी काव्य की रचना करते हैं जिससे अपने कीर्ति से उन्हें न तो बुढ़ापे का भय होता है न मृत्यु का भय होता है। ऐसे कवि हमेशा संसार में अमर होते हैं।
1: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रहे थे भर्तृहरि के वैराग्य शतक से पाठ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रकाश किरण, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरित मानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई, गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

0: अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस का गायन। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात। जानकारी का विषय है जैविक खाद आज की आवश्यकता।
1: जैविक खाद आज की आवश्यकता। पिछले 20 वर्षों के कृषि के विकास आंकड़ों को देखें तो हमारा उत्पादन 2 गुने से अधिक बढ़ा, लेकिन उर्वरकों का उपयोग 7 गुना एवं पेस्टिसाइड का उपयोग कई गुना बढ़ चुका है। पिछले 35-40 वर्षों में रसायनों के उपयोग से पर्यावरण, वातावरण, भूगर्भ जल, जलीय जीव जंतु, पशु पक्षी, खेती में लाभकारी जीव जंतु का संतुलन बिगड़ने लगा। खेती में अदानों से भरपूर उपयोग के बाद भी उपज को बनाए रखना एक समस्या हो गई। विश्व का ध्यान प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने वाली कृषि पद्धति की ओर गया। इस पद्धति को ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दिया गया। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ रसायन विज्ञान में प्रयुक्त ऑर्गेनिक या कार्बनिक से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक का संबंध सूक्ष्म जीव जंतु से है। वस्तुतः ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही अर्थों में जैविक खेती, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि जैसे शब्दों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैविक खेती का मूल मंत्र खेती में रसायनों के प्रभाव को रोकना। हरित क्रांति के बाद खेती में विभिन्न रसायनों वाले आदानों का भरपूर प्रयोग, रसायन युक्त कंपोस्ट, सीवेज के पानी और अवशिष्ट पदार्थों में भारी तत्वों, कीटनाशी, कृषि रसायनों आदि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा। इससे उपज में स्थिरता या बहुत कम बढ़ोतरी, कीट व्याधि का बढ़ता प्रकोप, फसलों के उत्पाद में कीटनाशक के अवशेष, प्राकृतिक संतुलन फायदेमंद पर भक्षी परजीवी जीव जंतु का नष्ट होना, मृदा स्वास्थ्य का खराब असंतुलन की स्थिति होने, खेती के आदानों जैसे उर्वरक, निदानाशक, कीटनाशक में अत्यधिक खर्च जैसी समस्या आने लगी। इन बातों को रोकना ही जैविक खेती का मूल मंत्र और सिद्धांत है। जैविक खेती का अर्थ रासायनिक उर्वरक, कीट व्याधि नाशक के बिना खेती करने से है। यदि रासायनिक आदानों का उपयोग नहीं करना है तब हमें अच्छी पैदावार के लिए कुछ सस्य क्रियाओं पर ध्यान देना होगा, जिससे खरपतवार, कीट व्याधि का प्रकोप कम हो। यदि हम परंपरागत खेती करें तो उपरोक्त सभी बातों का रोकथाम के उपाय उसमें निहित है, लेकिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के करीब पुरानी किस्में अधिक उत्पादन के लिए असरकारक नहीं थी। इस पद्धति में नई किस्मों में पोषक तत्व, कीट व्याधि, खरपतवार का नियंत्रण जैविक कृषि के अंतर्गत है। इसके लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर, हरी खाद आदि का उपयोग पोषक तत्व आदि के लिए किया जाता है। जैविक खेती यानी आत्मनिर्भर खेती। जैविक खेती की परिकल्पना में मुख्य उन बातों का समावेश है जिसमें फार्मिंग स्टीम खेती कहा जाता है, जिसमें खेती सभी आदानों जैसे खाद, पानी, कीटनाशक आदि खेत में ही होता है, जिसे हम ऑन फार्म इनपुट्स प्रबंधन भी कहते हैं। बाहरी आदानों पर कम से कम खर्च किया जाता है और खेती के सभी साधनों को एक चक्र रूप में उपयोग किया जाता है। किसान खेती के लिए साधनों की अपेक्षा अपने साधनों पर अधिक से अधिक निर्भर होता है। जैविक खेती के लिए सस्य प्रबंधन, समय पर बुआई, अलग अलग फसलों के लिए तथा अलग अलग क्षेत्रों के लिए बोनी

0: के समय समय की सिफारिश की गई है, जिससे कीट व्याधि के प्रकोप से बचा जा सके। अतः फसल एवं क्षेत्र के अनुसार समय पर बुआई करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी की जुताई तथा नींदा के अंकुरण के बाद पुनः जुताई कर बुआई करना चाहिए, जिससे खेत में नींदा का प्रकोप कम होता है। सही किस्मों का चुनाव। यदि क्षेत्र विशेष में किसी कीट व्याधि का प्रकोप ज्यादा है तो प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु यंत्रों का प्रयोग, संभवतः कतार में बोनी करें तथा नींदा नियंत्रण हेतु कतार में चलने वाले हस्त चलित कृषि यंत्रों का उपयोग करें। सही फसल चक्र। फसल चक्र में दलहनी फसलों का चुनाव अवश्य करें, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति तथा संरचना बनी रहे। स्वच्छ खेती। ज्यादातर कीट खेत की मेड़ों पर तथा घास फूस पर पनपते हैं और अंडा देते हैं। अलग अलग कीट व्याधि का परपोषी अलग होता है। जिस फसल की खेती कर रहे हैं उसके कीट व्याधि के नियंत्रण की कर्षण यांत्रिक तरीके की जानकारी एकत्र करें तथा स्वच्छता रखकर उस पर नियंत्रण करें। लगातार एक ही फसल न लें। फसल चक्र या फसल प्रणाली का चक्र निर्धारित करते समय ध्यान रखें, लगातार एक फसल या एक ही कुल की फसल एक ही खेत में न लें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको बता रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7:00 लोकगीतों के कार्यक्रम गुंज जंगल में आज आप सुनेंगे नेत्राम खड़गवंशी और साथियों के गाए डोमकच गीत और निर्मल दास और साथियों के गाए साजेन कर्मा गीत। 7:10 पर भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा सुनिएगा सुबह 7:30 पर। आज सुबह 8:30 किस्सा कहनी के तहत आज आप सुनेंगे कहानी सोना गुफा। संकलन एवं लेखन श्री सुदामा राम गुप्त का होगा, संयोजक नागेंद्र दुबे और प्रस्तुति शुभनाथ साहू की होगी। बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9:00 और 10:00 सुनिएगा नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 11:05 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग सुनिएगा दिन में 12:00। 12:30 पर कार्यक्रम आप मन के गीत हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। महिलाओं के लिए घरांगन कार्यक्रम प्रसारित करेंगे दोपहर 1:10 पर। इसमें बातचीत के अलावा सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने। ईमेल की गूंज सुनिएगा आज दोपहर 1:40 पर। और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट भजन संध्या का प्रसारण होगा शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं की युवावाणी आज शाम 5:30। जिले की चिट्ठी शाम 6:05 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी रायपुर से ही रिले करेंगे शाम 6:30 पर विधिक सहायता पर केंद्रित कार्यक्रम कानून की बात। इसमें आज का विषय है संपत्ति विवाद के संबंध में। वक्ता होंगे श्री आशुतोष द्विवेदी, अधिवक्ता जगदलपुर छत्तीसगढ़। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा सुनिएगा आज शाम 7:05 पर।

0: आज रात 9:30 बजे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इसमें आज आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर मंदा सुधारानी का कर्नाटकीय शैली में गायन। चित्रपट संगीत पेश करेंगे रात 9:15 पर। रात 8 बजे सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश, और ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल रहेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुं अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवितजनसम्बन्धस्य सीमापारसम्पर्कस्य पारस्परिकसांस्कृतिकधार्मिकपरम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य, भवननिर्माणस्य, सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमंत्री विगत पंचवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंकसत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य 7 दिनांकपर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमातिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM Gold प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीयपुरुषदलेन एशियाचषकहॉकी

0: कन्दुकना एक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चंडीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल।

नेत्राम खड़कवंशी और साथियों के स्वर में अभी आपने डोमकेत गीत सुना। आइए अब सुनते हैं निर्मल दास और साथियों के स्वर में साजेन कर्मा गीत।

निर्मल दास और साथियों के स्वर में अभी आपने सारियन कर्मा गीत सुना। इसी के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे रंगल समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से बातचीत। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी की ये यात्रा शुरू हुई थी 8 जून 2025 को। पूरे एक साल के सफर में आकाशवाणी के लिए समर्पित अनेक प्रसारकों और कलाकारों से हमने बातें की, उनकी यादों के पन्नों को पलटकर अतीत की कई उपलब्धियों के साथ आकाशवाणी से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों को याद किया। आज इस श्रृंखला की ये आखिरी कड़ी है। ये कड़ी जरूर अंतिम है, मगर हमारे सुधी श्रोताओं के अपार स्नेह के साथ आकाशवाणी की ये स्वर सरिता अनवरत बहती रहेगी मधुर ध्वनि तरंगों के संग। तो देश की वाणी आकाशवाणी के इस समापन कड़ी में आज की हमारी खास मेहमान हैं, बड़ी ही मीठी आवाज की धनी, जिनके नाम से आकाशवाणी रायपुर के श्रोता बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप हैं आकाशवाणी की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीपक, आपने इस अवसर पर मुझे याद किया और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
0: कल्पना जी, आपका ये जो नाम है ना, आकाशवाणी रायपुर के श्रोताओं के जहन में आज भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ गूंज रहा है, आज भी उन्हें याद है, और जब भी वे आपके इस नाम को याद करते हैं उस दौर के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम उन्हें याद आने लगते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी रायपुर से आपका जो जुड़ाव है ये कितना पुराना है?
1: अब ये कहो कि मेरा रेडियो से संबंध बहुत पुराना है। जब मैं पढ़ा करती थी ना दीपक, तभी मैं सोचा करती थी कि मैं जाऊंगी तो रेडियो में ही जाऊंगी। तो मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मैं रेडियो में जाऊंगी, और रेडियो में मैंने आकाशवाणी रायपुर ज्वाइन किया 75 में।
0: तो उस समय आप किस रूप में यहाँ आते थे, मतलब नियमित उद्घोषिका के रूप में आप ज्वाइन की थी या फिर किसी और कार्यक्रम में आती थी?
1: ना, पहली बार मुझे यहाँ पर सहायक केंद्र निदेशक थे महेंद्र, तो उन्होंने मुझे एक कहानी पढ़ने के लिए बुलवाया था
0: जी।
1: वो कुंतला गोयल जो अंबिकापुर की थी, अपने जमाने की बहुत वरिष्ठ कहानीकार थी, बहुत साहित्यकार थी, वो ऊंची बहुत ऊंची साहित्यकार थी, तो उनकी कहानी उन्होंने मुझसे पढ़वाई थी और उसका रिहर्सल उन्होंने अपने सामने करवाया था। तब दीपक मुझे कहानी कैसे पढ़ी जाती है ये मालूम हुआ कि कहानी पढ़ने का भी एक ढंग होता है रेडियो में।
0: ये किस सन की बात होगी?
1: तब मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, ये बात है 74 दिसंबर की।
0: बहुत पुरानी बात।
1: मेरा अपॉइंटमेंट जनवरी में हुआ था 75 में, और शादी हुई मेरी

0: दिसंबर में।
1: बहुत पुरानी बात है कल्पना जी, तो इस कहानी के बाद सीधे आप अनाउंसर बनकर आकाशवाणी में आ गई।
0: हाँ जी, तो इस कहानी के पीछे भी एक वाक्य

0: अब आपने जनवरी 1975 में उद्घोषक के पद पर यहाँ आकाशवाणी रायपुर में अपने कार्यों की शुरुआत की, तो यहाँ पर और कौन कौन लोग हुआ करते थे?
1: अरे हमारे जमाने के मतलब बहुत ही प्रवीण उद्घोषक हुआ करते थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम बता रही हूँ दीपक तुम्हें, आदरणीय किशन गंगेले जी, आदरणीय लाल राम कुमार सिंह जी और आदरणीय मिर्जा मसूद जी, इन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और इनसे मैंने सच में बहुत बहुत बहुत कुछ सीखा।
0: ये तो तीनों आकाशवाणी रायपुर की वो त्रिमूर्ति हैं जिन्हें प्रसारण में लेजेंड माना जाता है आकाशवाणी रायपुर के प्रसारण के लिए, तो इनके साथ में कौन कौन से प्रोग्राम आप किया करती?
1: मैंने सबके साथ सभी कार्यक्रम किए हैं और जैसे आपके पत्र, आपके मीत, ये गीत, अजी सुनिए और जब मिल बैठे हम, और मैं बिंदिया, मैंने ना बहुत सारे कार्यक्रम भूल रही हूँ, हाँ एक बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था किसले उस
0: जी,
1: समय
0: जी जी। अच्छा कल्पना जी, आप तो नाटकों में भी भाग लिया करती थी?
1: हाँ नाटक में भी मैं काम किया करती थी और बी हाई ग्रेड था मेरा, सिलेक्शन हुआ था मेरा, पहले तो बी हुआ करता उसके बाद भी हाई ग्रेड इसको बोलते हैं अपन, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था।
0: कल्पना जी, जिस वक्त आप आकाशवाणी में आई उद्घोषक के रूप में
1: जी,
0: सन 1975 के बाद की अगर दौर की बात करें तो वो वाकई रेडियो का ही दौर था और रेडियो के अलावा कोई और माध्यम लोगों के घरों में हुआ नहीं करता था, तो उस वक्त किस तरह का चार्म था रेडियो का, रेडियो के प्रति लोगों की रुचि और रेडियो में जो प्रसारक हुआ करते थे उनके प्रति लोगों का जो लगाव हुआ करता था, उसके तो बड़े किस्से हुआ करते थे उस जमाने में, आपके साथ भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी होंगी?
1: दीपक तुमने सच में बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया ये। जब मैं तब, तुम्हें पता होगा कि पहले ट्रांसमीटर से हमारा कार्यक्रम हुआ करता था,
0: जी,
1: तब स्टूडियो नहीं बना था,
0: जी,
1: है ना?
0: जी,
1: तो हम आपके मीत ये गीत पेश किया करते थे जब हमारी ड्यूटी होती थी या यह होती थी, तो बहुत से ऑफिस के सब लोग ना बाहर निकल जाया करते थे पान की दुकान पर
0: जी,
1: और सुना करते थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और श्रोता भी इंतजार करते थे कि आज कल्पना जी आने वाली है वगैरह वगैरह जो भी हुआ करते थे। और दीपक अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत से लेटर भी, आशिकाना लेटर भी आते थे कुछ श्रोता कुछ श्रोता लिखते थे कि आप अपनी फोटो भेजिए, हम दिल से लगा के रखेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, और बोलते थे कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप मेरी बहन के जैसे हैं, और किसी ने कहा कि मैं आपकी फोटो दिल से लगा के रखूंगा और मतलब अब मैं क्या बताऊं, मुझे श्रोताओं से बहुत बहुत बहुत प्यार मिला दीपक, बहुत प्यार मिला।
0: कल्पना जी, वो दौर ही वाकई रेडियो का एक सुनहरा दौर था और उसमें में तो टेलीविजन लोगों के घरों में था भी नहीं, टेलीविज़न तो 80 के बाद फिर लोगों के घरों में आया जब हमारे यहाँ एशिया डेटी 2 के बाद। अगर टेलीविज़न के आने के बाद भी रेडियो का एक चार्म तो बना ही हुआ था, खासकर
1: अभी भी है
0: बिल्कुल,
1: है वो रेडियो के अलावा दूसरा कुछ सुनते ही नहीं है।
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, ये होता है ना कि एक उद्घोषक जब आकाशवाणी के कैंपस में अपने कार्यक्रमों में पूरी तरह से समर्पित होकर श्रोताओं के लिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पेश करते हैं, तो उस कार्यक्रम को सुनने के बाद में उनकी एक छवि बनती है श्रोताओं के मन में, चारों तरफ चारों दिशाओं में उनके नाम गूंजते हैं, उनके कार्यक्रम गूंजते हैं, और उसके बाद जो वो व्यक्ति जब आकाशवाणी कैंपस से बाहर निकलता है, अपने शहर से बाहर निकलता है, किसी यात्रा में जाता है, किसी से मुलाकात होती है, और उस वक्त जब लोगों को पता चलता है कि मैं तो कल्पना यादव जी के सामने खड़ा हूँ, तो कैसा लगता था श्रोताओं को उस समय आपसे मिलकर?
1: दीपक, वाकई में तुमने जो ये यादें, सुनहरी यादें दिलाई ना, यकीन मानो मैंने रोंगटे खड़े हो गए हैं। कई वाक्य हैं ऐसे
0: जी, जी।
1: बहुत सारे मतलब मेरे सामने ऐसे जिंदगी के लम्हे हैं जिन्हें मैं भुलाई नहीं भूलती। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा बेटा, तब मेरा बेटा 7-8 साल का रहा होगा
0: जी,
1: हम ट्रेन से आ रहे थे, तो एक आदमी, एक सज्जन जो है मुझे बहुत घूरे जा रहे थे।
0: अच्छा जी,
1: तो बेटे को बहुत गुस्सा आया, वो मेरे पास आ गया, बोला माँ ये आपको क्यों घूरे जा रहा है, तब ये 7-8 साल का ही रहा होगा
0: जी।
1: तो

0: मैंने कहा कि बेटा हमें क्या मालूम है क्यों घूर रहे। इतने में वो व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल्पना यादव हैं। मैंने कहा कि जी हाँ मैं कल्पना यादव हूँ। तो बोले कि हम आपके कार्यक्रम सुनते हैं, आपके कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं क्या बोलूं, मतलब वो शब्द भी याद नहीं है और अपने मुंह से अब क्या बोलना उन शब्दों को, पर एक यादगार तो रहती है। एक वाक्य ये मुझे बहुत, मतलब बच्चे के साथ बहुत अच्छा लगता है कि उस जमाने में, फिर बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कि देखो वो इसलिए मुझे घूर रहे थे।
1: अच्छा कल्पना जी, जिस वक्त आकाशवाणी रायपुर में एक से बढ़कर एक ड्रामा बना करते थे, झलकियां हुआ करती थी, पत्रोत्तर हाँ, के कार्यक्रम में भी आप भाग लिया करती थी और ट्रांसमिशन ड्यूटी भी आप किया करती थी, है ना
0: जी, जी,
1: और ट्रांसमिशन ड्यूटी तो इंसान को वक्त का बड़ा पाबंद रहना सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: खासकर मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, सुबह की सभा में, बिल्कुल जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो एक अनाउंसर जाग कर बिल्कुल सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक आकाशवाणी पहुंच जाता था। और इस ट्रांसमिशन ड्यूटी में भी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बड़ी एडवेंचर क्रिएट करने वाली घटनाएं होती हैं कि आप, पता चल रहा है कि कई बार हम विलंब से पहुंचे और कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले पहुंचे, तो इस तरह की कभी कोई घटना आपके साथ घटी है क्या?
0: एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि मेरा घर तो बहुत पास था, जब ये स्टूडियो की बात है, जब अपना सिटी में ट्रांसफर हो गया था, ये वाला अपनी बिल्डिंग बन गई थी आकाशवाणी की
1: जी,
0: तो मेरी दीपक तुम यकीन मानो 5 मिनट पहले मेरी नींद खुली, ओपनिंग होने के पहले
1: जी,
0: मैं जिस ड्रेस में थी, जिस नाइट सूट में थी, मैं भागे भागे वहां पर गई ना, और उसमें ही मैंने ओपनिंग किया और पूरा शहनाई वादन वगैरह जो जो होता है अपना पूरा ओपनिंग किया, और उसके बाद मैंने ड्यूटी ऑफिसर से बोला कि मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं घर से तैयार होकर आती हूँ। तब तक वो कार्यक्रम भोपाल से रेले हुआ करता था।
1: अच्छा, फिर आप घर गई वापस?
0: मैं घर वापस गई और फिर तुरंत तैयार होकर फिर मैं वापस आई।
1: कल्पना जी, हमने सुना है कि आपका जो परिवार है वो फौजी परिवार रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: दीपक, हमारी शादी की बात चल रही थी, 76 में हमारी शादी हुई, 75 से तो ये एक बार ऐसे देखने के लिए आए और इनको मालूम था कि मैं रेडियो में कैजुअल जाती हूँ और ये करती हूँ, तो ये गाना हरदम ये लगा दिया करते थे, पल पल तुम दिल के पास रहती हो, है ना। जब शादी हुई तो अब हम एक बार गए फील्ड पे, फील्ड पे स्टेशन में फैमिली नहीं रख सकते हैं दीपक
1: जी, जी।
0: मगर 2 महीने या 1 महीने के लिए फील्ड स्टेशन खोल देते हैं फैमिली को आने के लिए। तो हम लद्दाख गए, वहां पर जो हमारा मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी और कर्नल यादव की तो ऐसी बैंड बजाई उन्होंने और हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
1: अच्छा।
0: बोले मिसेज यादव, यदि वहां पे मिसेज यादव फर्स्ट नेम नहीं लेते हैं, मिसेज यादव, बोले मिसेज यादव ये जो है ना आपका कार्यक्रम जो आप रात को 10 बजे पेश करती हैं, कौन से दिन मनचाहे गीत हुआ करते थे ना
1: जी जी जी,
0: तो बोले कि ये ना ट्रांजिस्टर लेके घूमते रहता है इधर से उधर इधर से उधर। हाँ, और वो वाकई में दीपक ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 तो कौन कौन से गाने बजाए ये लिस्ट भेजा करते थे हमारे लेकर।
1: अच्छा, वो पूरा हिसाब किताब रखते थे। अच्छा जी,
0: बहुत बहुत ही मतलब मजेदार। और मेरे साथी जैसे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा है
1: जी,
0: मंडलोई जी हैं और तेजिंदर सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये हम सब हम उम्र थे ना, तो इन लोग चिढ़ाया भी करते थे, कल्पना ये वाला गाना बजाना, हाय हाय ये मजबूरी
1: जी,
0: तेरी 2 टकिया की नौकरी पे मेरे लाखों का सावन जाए ना
1: जी, जी, जी।
0: बहुत अच्छा समय था दीपक।
1: अच्छा कल्पना जी, ये बताइए कि कर्नल यादव साहब रेडियो के शौकीन जो हैं, वो आपकी शादी के बाद बने या पहले से थे?
0: शादी के बाद, जब हमारी शादी की बात चल रही थी ना तो मुझे मालूम था कि मैं रेडियो में काम मतलब कैजुअल जाती हूँ, है ना, तो वो ना फिर एक बार आए रायपुर
1: जी,
0: तो वो ट्रांजिस्टर वगैरह साथ लेकर आए।
1: अच्छा,
0: कब बोलती है, कब क्या करती है, ये है, और फिर इनको लोग चढ़ाया भी करते थे, अरे यार तू तो फौज में जाता है ना, ड्रिल में भी ट्रांजिस्टर लेके जाया कर।
1: अच्छा।

0: इस तरह से ना बहुत अच्छा समय गुजरा।
1: तो ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी आपका शुक्रगुजार है कि शादी करके आपने एक श्रोता बढ़ा दिया।
0: बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे दीपक बहुत प्यार मिला, बहुत
1: जी,
0: प्यार मिला
1: जी,
0: मुझे
1: जी।
0: बहुत प्यार मिला।
1: कल्पना जी, हर आकाशवाणी के कर्मचारी के जीवन में, प्रस्तुतकर्ता के जीवन में एक दिन वो भी आता है जब उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता है।
0: हाँ।
1: तो आपकी सेवा का जो आखिरी दिन था वो कौन सा था और आपको उस वक्त कैसा लग रहा था?
0: मैंने ना प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था, मेरे सर्विस के 10-12 साल थे
1: जी।
0: तो तब मैंने ट्रांसफर भोपाल करवा लिया था कि भोपाल में हम लोग सेटल होने वाले थे।
1: कितने साल रहे आप भोपाल में?
0: भोपाल में मैंने मुश्किल से 2.5-3 साल काम किया।
1: अच्छा,
0: मुश्किल से 2.5।
1: तो भोपाल के बारे में भी कुछ बताएं हमारे श्रोताओं।
0: हाँ, बड़ी सुहानी यादें भोपाल
1: अच्छा।
0: से भी मुझे मिली। जी, रियली कह रही हूँ, बहुत
1: जी,
0: सुहानी। हालांकि मैंने बहुत कम काम किया लेकिन प्यार भी मुझे बहुत मिला। और उसका फाइनल फेयरवेल जो होता है
1: जी,
0: मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इतने कम समय में मुझे भोपाल का भी बेहद प्यार मिला, बहुत प्यार मिला।
1: वो कल्पना यादव जी जिनकी आवाज वर्षों आकाशवाणी रायपुर में गूंजती रही, फिर यही खूबसूरत आवाज करीब 3 सालों के लिए भोपाल चली गई। आज उम्र के इस पड़ाव में जब आप आकाशवाणी की अपनी संपूर्ण यात्रा को याद करती हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: सच में जब तुम अभी ये बोल रहे हो ना, पूछ रहे हो मुझसे, तो यकीन मानो मेरी पोती मेरे सामने बैठी है
1: जी।
0: वो मेरी आंखों में मतलब मेरी आंखें डबडबा आई है। मतलब मैंने जिसने मैं ये सोचा था कि मैं करूंगी सर्विस करूंगी तो रेडियो में ही करूंगी, नहीं तो शादी तो होनी है और वो भी ऑफिसर से ही होगी ही होगी। मतलब जो मैंने चाहा मुझे जिंदगी में वो सब कुछ मिला, वो सब कुछ मिला मुझे।
1: जी, जी।
0: और मैं जो मेरे साथी इस दुनिया में हैं नहीं है उनको भी मैं बहुत याद करती हूँ, जो हमारे समय के थे। वो तो तुम जानते हो दीपक,
1: बिल्कुल,
0: सब एक एक करके
1: बिल्कुल,
0: चले गए, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था,
1: जी,
0: जो
1: जी,
0: बताया
1: जी,
0: था
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: जो माहौल हमने देखा है, जो एक जो अपनापन था, मुझे गंगेले जी ने बहुत कुछ सिखाया, लाल राम कुमार सिंह जी ने खूब सिखाया, मिर्जा मसूद ने अलग सब कुछ अलग अलग सिखाया, तीनों उद्घोषकों से मैंने कुछ न कुछ अलग अलग अलग सीखा।
1: जी जी। तो इन दिनों कल्पना यादव जी का जो समय है वो कैसे बीत रहा है?
0: देखो, ये प्रतिभा मुझ में नहीं मालूम थी कि मुझ में है
1: जी,
0: कि मैं कुछ लिख सकती हूँ या पढ़ सकती हूँ। मुझे पढ़ने का शौक शुरू से रहा है।
1: हाँ,
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, जी।
0: तो और पढ़ना भी पड़ता था थोड़ा बहुत, तो तुम तो जानते हो स्क्रिप्ट बनानी है या ये करनी
1: बिल्कुल,
0: है थोड़ा
1: बिल्कुल,
0: बहुत है ना
1: जी, जी।
0: तो और बस अब तो मेरी पोती है, पोती के साथ समय बहुत अच्छा गुजरता है
1: जी,
0: और हम दोनों में खूब बातें भी होती हैं, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं ना उस तरह से हमारी बातें होती हैं।
1: अच्छा।
0: बहू बेटा है उनके साथ बहुत अच्छा समय गुजर जाता है
1: जी।
0: फौजी क्लब है, फौजियों के साथ हमारे पुराने संबंध है कर्नल यादव के, तो बस उनके साथ बहुत अच्छा संबंध गुजर जाता है। कभी रायपुर का चक्कर लग जाता है, कभी मेरठ का चक्कर लग जाता है
1: जी।
0: और भोपाल में तो रहना ही है बच्चों के साथ।
1: बिल्कुल। तो कल्पना जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जिस खुशी के साथ आपने आकाशवाणी रायपुर की स्मृतियों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया है वो खुशी सदैव आपके चेहरे पर बनी रहें, आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आकाशवाणी रायपुर को इस कार्यक्रम के लिए आपने अपनी ढेर सारी पुरानी यादों के साथ बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, देश की वाणी आकाशवाणी की इस लंबी श्रृंखला में हमारी कोशिश यही रही है कि हम देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े प्रसारकों और कलाकारों से उनकी सुनहरी यादें ताजा करें। इस कार्यक्रम के लिए हमारे श्रोताओं का जो स्नेह और उत्साहवर्धन हमें मिला है वो अविस्मरणीय है। इसके लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। तो अब अपने दोस्त दीपक हटवार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
2: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
3: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
4: नमस्कार सरगुजा।
5: नमस्कार सरगुजा।
1: नमस्कार सरगुजा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को कल्पना सिन्हा का नमस्कार। श्रोताओं, जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। इसी जानकारी के बाद श्रोताओं, आइए सुनते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में इस कार्यक्रम का पहला गीत।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सीआईडी का गीत। शब्द रचना जान निसार अख्तर की थी और संगीत निर्देशन ओपी नैयर का था। और अब समाचारों के क्रम में अगला समाचार। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के निर्देश के परिपालन में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना जिला कलेक्ट्रेट के कंपोजिट बिल्डिंग के कक्ष क्रमांक 20 में किया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का नंबर 07774221505 और 07774222505 है, जिसमें संपर्क कर सूचना 1 जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक 24 घंटे दी जाएगी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु नोडल अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख होंगे। इसके साथ ही कक्ष के सफल संचालन हेतु अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म आर पार का गीत। शब्द मजरूह के हैं और संगीत निर्देशन ओपी नैयर का है।

नमस्कार सरगुजा, कार्यक्रम का अगला समाचार है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नया रायपुर द्वारा नवीन राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा सदस्य विलोपित करने संबंधी आवेदनों को अब सेवा हेतु पोर्टल e.district portal के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नागरिक अब सेवा हेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में दर्ज जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का परीक्षण और सत्यापन छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार नवीन राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के पश्चात जोन अथवा जनपद कार्यालय में ऑनलाइन जनरेट राशन कार्ड की PDF प्रति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। विभाग ने ये निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को अपने परिवार के मुखिया एवं कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का EKYC अनिवार्य रूप से कराने के लिए प्रेरित किया जाए। EKYC संबंधित उचित मूल्य दुकान में स्थापित ई-पास मशीन अथवा फेस EKYC के माध्यम से कराई जा सकेगी। ये व्यवस्था राशन कार्ड संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। और इस समाचार के बाद आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ों में फिल्म मदर इंडिया का गीत।

0: पकड़ना
1: पाए।
2: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे
3: हाँ। बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय की सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 8 जून 2026 को समय सीमा की बैठक पश्चात आयोजित की गई है। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। छात्रावास एवं आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बलरामपुर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग संचालित स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना के अंतर्गत जिले के विभागीय छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत छात्र छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों में जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है वहाँ संचालित विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों के अनुसार MBBS, BAMS तथा BHMS योग्यताधारी चिकित्सकों से वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक चिकित्सक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 17 जून 2026 को सायं 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला मुख्यालय बलरामपुर में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुकेश की आवाज में अभी आपने फिल्म अनोखी रात का गीत सुना। शब्द इंडियावर के थे और संगीत रोशन का था। श्रोताओं, अगली सूचना है, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं के लिए आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केंद्र कन्या जिला दुर्ग में शिक्षक बनने की अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक विद्यार्थी छात्राएं प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कंपोजिट बिल्डिंग प्रथम तल अंबिकापुर से प्राप्त कर 12 जून 2026 तक शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उज्ज्वल भविष्य की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। शासकीय पॉलिटेक्निक चिरमिरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा GIS एवं GPS डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए https://cgdte.admission.nic.in तथा https://dte.cg.gov.in पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार प्रथम चरण का पंजीयन 11 जून से 15 जून 2026 तक तथा प्रवेश प्रक्रिया 20 जून से 24 जून 2026 तक संचालित।

0: पैलेट होगी।
1: द्वितीय चरण का पंजीयन 26 जून से 30 जून 2026 तक एवं प्रवेश 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। वहीं तृतीय चरण का पंजीयन 11 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक होगा तथा संस्था स्तर पर काउंसलिंग एवं स्पॉट एडमिशन 13 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बालक छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। संस्थान प्रबंधन ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर प्रवेश प्रक्रिया का लाभ लेने की अपील की है। प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय पॉलिटेक्निक चिरमिरी से संपर्क कर सकते हैं।

0: मुकेश और लता मंगेशकर के गाए फिल्म फिर कब मिलोगे के इस गीत के साथ ही नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम यहीं तक।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले ही कुछ पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा

0: रिले करेंगे।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
6: Collaborate closely to maintain security.
7: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
6: Full potential of our time.
4: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत

0: क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
1: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान

0: साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के ये भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सरगुजिया लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहानी के अंतर्गत कहानी सोना गुफा। संकलन एवं लेखन श्री सुदामा राम गुप्त का है, संयोजक है नागेंद्र दुबे और प्रस्तुतकर्ता है शोभनाथ साहू। प्रतिभागी हैं शोभनाथ साहू, मृदुल गुप्त और कमलेश सिंह।

0: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी की आज की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं सरगुजिया कहानी सोना गुफा। संकलन व लेखन सुदामा राम गुप्त का है, संयोजक हैं नागेंद्र दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं शोभनाथ साहू। तो लीजिए सुनिए सरगुजिया कहानी सोना गुफा।
1: कथा सार इस प्रकार है। एक गांव में दो किसान रहते हैं। एक किसान बहुत ही सरल और दयालु रहता है। एक साल वो अपने खेत में चना बोता है जिसे कुछ बंदर खाते रहते हैं। किसान उन्हें केवल समझाता है, मारता पीटता नहीं है। कुछ दिनों बाद वे बंदर किसान की आधा से अधिक फसल को खा लेते हैं। एक दिन रखवाली करते करते किसान अपने खेत में ही सो जाता है। उसे मरा समझकर बंदर किसान को सोना गुफा में ले जाते हैं। वहां से किसान बहुत सारा सोना लाता है, उसे बेच बेच कर सुखपूर्वक जिंदगी बिताता है। इस राज को जानकर दूसरा किसान भी दूसरे वर्ष अपने खेत में चना बोता है। फसल आने पर उसकी रखवाली करता है, बंदरों को ढेला से मारता है। कोई भी पशु पक्षी उसकी फसल को नहीं खा पाते हैं। एक दिन किसान खेत में रखवाली करते हुए सोने का बहाना करता है। उसे मरा समझकर बंदर उसी चांदी गुफा में ले जाते हैं। इस पर वो अधीर होकर सोना गुफा में ले चलो ऐसा कहता है। उसे जीवित जानकर बंदर वहीं पर किसान को पटक कर भाग जाते हैं। न वो चांदी पाता है और न ही सोना। यही इस कहानी का सार है।
0: एक ठे गांव में दुई जन किसान रहत रहिन। ओमन सुघर पड़ोसी रहिन। संगे संग खेती बारी करें, बनी मजूरी करें और पहाड़ टोंगरी घलो एके संग जाए।
1: दोनों किसान गरीब रहीं, कैसनो दोनों जुआर पेच पसैया बनाए के खाए पिए। ओंडा दसना घलो ओमन जग कमेच रही। खटिया मचिया तो कहां भेटा है। एक दिन दोनों पड़ोसी गोठियाए लागिन। एक जन कहीस,
2: एगो डोली में असो ओनहारी बुनहू पड़ोसी, ओला बेच के एगो कमरा लेहू, राती जाड़ के मारे नींदेच नी पड़े।
1: ता दूसर पड़ोसी हर कहीस, उन्हारी बुनबे तो बाकी ओला बंदरा मन ले बचाए सकबे तब न पड़ोसी। बेंदरा मन एक धार रोख रोखाए के उतर ही तहा सबे चुन्हारी ला फोएल फोएल के खाए ढार ही।
2: ता उकर पड़ोसी हर कहीस, अब बेंदरा मन खाए की बचाए, का करहूं। गए बछर घलो तो कुसियार जगाए रहे, ओहू ला कहां बचाए सके। रात भर भलुआ मन पसर पसर के सबेज कुसियार मन ला चूह डारिन, थोड़े चूहीन और बगरा ला टोय टायर के फेंक देहीन।
1: खेती बारी कर धंधार तो इसने हवे पड़ोसी, तेकरे ले तो हमार फरिया कहर कन्या ले नीचे नी उतराता है, नाठे हुना हर तो पाता है।
0: इसने गोठिया हाथ मारा, दोनों पड़ोसी अपन अपन खेत गति रेंग देहीन।
1: पहिल पड़ोसी हर ओन्हारी बुने बर अपन डोली ला सुख घर अकन ज्योतिष कोड़ीस, खाद करसी फेकीस तहा बिहन ले जाए के छीट देहीस।
0: एक पखवारी में किसान हर अपन

0: ओन्हारी ल देखे बर खेत कति गईस। ओन्हारी हर शीत में फूल के ढमढमाए रहीस और कोनो कोनो बिहन हर जरियाए गए रहीस। किसान हर सोचिस सबे दाना हर जरियाए गईस है, असो सुघर फसिल होही। खेत ला बूल बायल के ओहर घरे रेंग देहीस। तहा बनी मजूरी करे बर परदेश ही कल गईस।
1: परदेश ले बनी मजूरी कर के फिरीस ता एक दिन फेर ले ओन्हारी ला देखे बर खेत कति गईस। ओन्हारी कर पौधा हर लहलहात रहीस। एसो कर बच्छर अकरासी पानी कर बरसे ले ओन्हारी हर एक बरोबर जामे रहीस और लोभावन दिखत रहीस। किसान हर सोचे के लागिस,
0: बनी मजूरी करे बर अब नी जाओ, यही ओन्हारी ला गोरहूं। एक के महीना में लोयर पीट के बेच देहूं तहां तो पैसे पैसा हो जाही।
1: ऐसने सोचत बिचारत किसान हर खेत ला किंदैर किंदैर के देखे के लागिस। देखते देखत कहां अंगले एक खरिका बंदरा मन ओकर खेते आए के ढपाए गिन और ओन्हारी ला नोच नोच के खाएक लागिन।
0: किसान कर तो बुधे भुलाए गईस, का करे का नी करे ओहर सोच में पैर गईस। उते बेंद्रा मन केचो मेचो कैर कैर के ओन्हारी ला खात रहीन।
1: किसान हर सोचिस,
0: बेंद्रा मन ला नोचे खाए देओ, गाछी हर औ फदकी।
1: ऐसने सोच के बेंद्रा मन ला काही नी कहिस। बेंद्रा मन नोचिन खाइन तहां टोंगरी में चढ़ गई।
0: थोड़े दिन बीते कर बाद किसान हर फेर खेतला देखे बर गईस। खेतला देख के ढेरेच खुश होइस। उन्हारी मन फेर के सम डाम होय रहीन। कोनो कोनो डांटा मन पाकत घलो रहीन।
1: किसान हर डोली ला किंदर किंदर के देखे लागिस। इतरे में फेर ले एक खरिखा बेंद्रा कहां बाट ले आए के खेत में रखेर गिन और उन्हारी ला फोइल फोइल के खाएक लागिन।
0: किसान हर कहिस,
1: जीन खावा रे बेंद्रा मन, यहाँ जब्बर मेहनत करे हो, खेत ला जोते कोड़े हो बाबू, खाद बिहन डारे हो, सब इचला तुमन खाए डार हो, तो मैं काला लोर के घरे ले जू ना।
0: किसान कर गोठला सुनिन तहा बेंद्रा मन केचो मेचो कर के फेर ले टोंगरी में चढ़ गईन। दूसर दिन फेर ले किसान ओन्हारी ला देखे बर आइस तो का देखता है कि फेर ले एक खरिखा बेंद्रा खेते ढपाए के ओन्हारी ला खात रहे। थोरेक ला तो खाए और बगरा ला खाएं दे। किसान हर फेर ले कहिस,
1: जीन खा बाबी, सबेचला खाए ढार हो तो मोर बर का बाच ही रही। सारे बेंद्रा हो मोर बात ला नी मानी हो ना तो काली फांदा खेल हूं तब जानी हो।
0: तहा फेर ले बेंद्रा मन केचो मेचो करत मारत टोंगरी में चढ़ गईन।
1: बेंद्रा मनैया रहीन, किसान कर खेते पहुंचत ले तो उमन पेट भैर भैर के ओन्हारी ला खाए ढारे रहे। किसान हर अपन घर गोसाइन ला कहिस, हे रे ये बेंद्रा मन ओन्हारी ला खाए ढारा ता है, नी बचाए, ले तो सीधा संजोर दे, खेते च रांधू खाहू और ओन्हारी ला अगोर हूं।
0: किसान कर घर गोसाइन भाड़ा बर्तन चाउर दाल बाइन देहिस। तहां किसान होत बिहान खेते आए के ओन्हारी ला अंगुरेक लागिस।
1: किसान हर मजीन होत होत पेज बनाइस, लकरा ला पसैया में बोत के खाइस पीस। सोचिस क्या बेंद्रा मन नी आवे, यही जिगा तनिक ढलेंग लो।
0: पटिया ला बिछाए के किसान ढलेंगेस, तहां तो ओला नींद पैर गईस। उते टोंगरी ले बेंद्रा मन फेर उतरीन और खेते ढपाए गईन। जब पर जुआर ले ओन्हारी ला खाइन पेट भरीस तहां खेत ले हिंकलेक लागिन।
1: बेंद्रा मन कर मुखिया हर कहिस, मेरे आज किसान हर हमन ले काबर तो काही नी गुठियाइस।
0: आने बेंद्रा मन कहिन,
1: चला तो जाए के देखी किसान हर का करता है।
0: तहां सब बेंद्रा मन किसान जिघा गईन। किसान ला छुवेक टमुरेक लागिन, कोनो गोला कोथे ता कोनो मूड़ला, कोनो हिलाए तो कोनो डुराए। सब बेंद्रा किसान ऊपरे झूमटे रहिन।
1: उते किसान हर कन पाए रहिस। किसान सोचे के लागिस कि रहा तो ये बेंद्रा मन मोके कैसे करत है, तेला देखो तो।
0: हिलाए डुलाए के बेंद्रा मन देखिन किसान नी उठिस।

0: तहां बेंद्रा मन सलाह करी।
1: ए भी ये किसान हर मर गिस, चलाइला गुफा में पहुंचाए दी।
0: तहां कोनो बेंद्रा गोल्ला धरीस और कोनो हाथला डोह टांग के उमन किसान ला गुफा कती ले गई।
1: जात जात एगो दू मुहानी परिस, वही जिगा किसान ला मढ़ाए के बेंद्रा मन सुस्ताए लागिन। वो दू मुहानी जिगा एगो डगर हर चांदी गुफा कती जाए रहीस और एगो ठर सोना गुफा कती जात रहीस।
0: बेंद्रा मन सोचेक लागिन कि किसान ला चांदी गुफा में ले जाए कि सोना गुफा में। तब बेंद्रा मन कर मुखिया हर कहीस,
1: तुमन किसान कर सबे चोनहारी ला खाए ढारे हवा। किसान हर हमन ला एको दिन मारीस ना तो जंगाइस, भला मानुष रही इस बेचारा हर, चला एला सोना गुफा में ले चली, उन्हें सुताए देबो।
0: सब बेंद्रा किसान ला डोहिन टांगिन तहां सोना गुफा में ले जाए के सुताए देहिन। गुफा में सुताए के बेंद्रा मन ओ जिघा ले भाग गईन।
1: बेंद्रा मन ला भागत जान किसान उठ बैठिस और चारों अंगला देखेक लागिस। चारों कती पियर पियर सोना छितराए रहिस। किसान अपन पगरी ला उतारिस और सोना ला पगरी में बांधे बांधे करिस, तहां घरे बाट रेंग देहिस।
0: किसान कर घर गोसाइन सोना ला देखिस ता ढेरे खुश होइस। किसान और ओकर घर गोसाइन सोना ला भंजाए भंजाए के मान मनीषा कर वस्तु बेसायक लागिन और मने मने कर रोटी पीठा बनाए बनाए के खाएक लागिन। अपन पड़ोसी कर चटक मटक ला देख के ओकर पड़ोसी हर कहिस,
1: ने पड़ोसी, आजकल तो सुघर सुघर पहना तोड़त हवस रे, कतेक रुपया कर उन्हारी होइस कि कहो बनी मजूरी बर जाए रहे। ता किसान हर अपन पड़ोसी ला सब बात ला फोर के सुनाइस। अपन पड़ोसी कर गोट ला सुन के दूसर किसान हर घलो अनहारी बुने पर सोचिस।
0: तहा दूसर बछर ओहू किसान ओनहारी बुनिस। जे दिन ले बुनिस ते ही दिन ले अगुरा में बैठ गईस। का मजाल की एगो चिड़िया चुरगुन ओकर ओनहारी ला बिने खाए सके। बेंद्रा मन ला देखे ना तो ढेले ढेला मारे मारे करे। एक दिन अपन पड़ोसी कर गोठ ला सुरता कैर के ओहू हर खेतेच पेच पसिया बनाइस, खाइस पीस तहां ओही जिघा ढेलन गईस।
1: थोरेक देरी में टोंगरी ले बेंद्रा मन उतरिन, खेते आए के ओनहारी ला खाएक लागिन। वो दिन बेंद्रा मन ओनहारी ला पेट भर खाइन। बेंद्रा कर मुखिया हर कहिस, किसी में तो आज हमला किसान हर नीलब दाता है ना भारतेज गरिया आता है, चला तो जाए के देखी किसान हर का करता है।
0: ऐसनी सोच के सबेच बेंद्रा मन किसान जिघा गईन। किसान तो कन पाए रहिस, ओला छुइन टमुड़िन हिलाइन डोलाइन, तहां कहीन एहू हर मार गईस, चला एहू ला गुफा में पहुंचाए दे।
1: बेंद्रा मन कर मुखिया हर कहिस, चला डोहा टांगा और ले चला।
0: तहां सब बेंद्रा मन डोहिन टांगिन तहां गुफा कती जाएक लागिन। ओही दुई मुहानी जग किसान ला मढ़ाए के सोचेक लागिन कि एला सोना गुफा में ले जाई कि चांदी गुफा में। बेंद्रा मन कहिन,
1: एहर हमन ला खूब लब्दाई सा है, एला तो चांदी गुफा में ले चला।
0: अजीवा किसान चांदी गुफा कर बात ला सुन के धरफराए के कहिस, नहीं मोला सोना गुफा में ले चला।
1: किसान कर गोट ला सुन के बेंद्रा मन कहिन, इहर जिया तहां भी कनपाए तो रहीस।
0: तहां किसान ला ओही जिघा पटेक पुटकू के सब बेंद्रा मन भाग गईन।

0: अभी आप सुन रहे थे सरगुजिया लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहने के अंतर्गत कहानी सोना गुफा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ। इसमें आज आप सुनेंगे कानड़ा सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार हैं बीआर गीथा।
1: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
2: हाँ, आ गए हैं।
1: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
2: मारुति संगीत पाठशाला।
1: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
2: हाँ।
1: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
2: हाँ, सिखाएंगे।
1: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
2: दोड्ड रंगे गौड़ा।
1: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
2: हाँ, तैयार है।
1: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
2: कडल हक्कीगळु।
1: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
2: हाँ।
1: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
2: हाँ, हाँ।
1: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
2: हाँ।
1: रख लिया है?
2: हाँ।
1: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाँडु तिहवु हारु तिहवु,
2: हाडु तिहवु हारु तिहवु,
1: कडल करेय खगकुला,
2: कडल करेय खगकुला,
1: यनी तो मुगिला,
2: यनी तो मुगिला,
1: उद्द अगला,
2: उद्द अगला,
1: जी की दानी तो,
2: जी की दानी तो,
1: बांदड़ा
2: बांदड़ा।
1: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है।
2: हाँ?
1: आगे का स्टंजा है बान लोक नगुव नाका,
2: बान लोक नगुव नाका,
1: हारो हक्की पालीगे,
2: हारो हक्की पालीगे,
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
2: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
2: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
1: लिख लिया?
2: हाँ।
1: सब लोग लिख लिया?
2: हाँ।
1: अच्छा, तो अगला स्टंजा दूर दूर हारी हारी,
2: दूर दूर हारी हारी,
1: व्योम कानुआ बगे,
2: व्योम कानुआ बगे,
1: हसीव मरेसी,
2: हसीव मरेसी,
1: वांछे मेरेसी,
2: वांछे मेरेसी,
1: दिगंत सेरो लघु बगे,
2: दिगंत सेरो लघु बगे।
1: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा।
2: हाँ।
1: वो भी सुना दो।
2: हाँ।
1: लिख लेते हैं।
2: हाँ।
1: याव नाडो यंथ काडो,
2: याव नाडो यंथ काडो,
1: हारो आसे हक्कीगे,
2: हारो आसे हक्कीगे,
1: मुक्त गगन नूरु काल,
2: मुक्त गगन नूरु काल,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे,
2: ईजो शक्ति रेक्केगे।
1: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
2: हाँ।
1: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
2: हाँ।
1: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी। हाँ?
2: हाँ।
1: को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
2: हाँ? हाँ।
1: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहले अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसी है। अच्छा तो गाते हैं।

सामुदायिक गीत के प्रशिक्षण पाठ में अभी आप सुन रहे थे कानड़ा सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार थे B.R. गौड़ा। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में आप सभी को नमस्कार। आज कल्पना सिन्हा की ओर से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे कई जानकारी वाली बातें करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे कुछ प्यारे से गीत। और हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं दो लाइनों से। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा।

बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में आप सभी को नमस्कार। आज कल्पना सिन्हा की ओर से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे कई जानकारी वाली बातें करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे कुछ प्यारे से गीत। और हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं दो लाइनों से। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जी हाँ श्रोताओं, किसी शायर की ये खूबसूरत लाइनें निश्चित ही हमारे मन में एक नया जोश भर देती हैं, और यही जोश ही तो है जो हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी इच्छित मंजिल को पाने के लिए।

0: श्रोताओं, ये था गुंजन कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हमने लिया था फिल्म वो लम्हे से। आवाज थी केके की, शब्द नीलेश मिश्रा के थे और संगीत प्रीतम का था।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, गुंजन कार्यक्रम में आज कुछ जानकारियों के साथ मैं हूं कल्पना सिन्हा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हम सभी के जीवन से प्रतिदिन जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा। श्रोताओं, हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की नींव है। दूषित भोजन और पानी से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने के बहुत सारे कारण और उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो दूषित भोजन खाने से दुनिया भर में लाखों लोग हर साल बीमार पड़ते हैं, इसलिए यह दिन लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का चयन करने के लिए जागरूक करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने मिलकर 2019 में इस दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। इस दिवस के अवसर पर श्रोताओं, आज दुनिया भर के में विभिन्न जगहों पर विभिन्न जागरूकता अभियान, वेबिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि खाद्य मानकों का पालन हो सके और वैश्विक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

0: ना तुम जानो ना हम। श्रोताओं, अभी ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, लकी अली और रामिया की आवाज़ों में, फिल्म थी कहो ना प्यार है। और अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: दादी, कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: रेखा, जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
6: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात करनी थी।

0: क्या आज फोन नहीं लगेगा?
1: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
2: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
1: रेडियो एकदम सही सेट है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
1: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन। बात करें, गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: श्रोताओं, आज के गुंजन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। एक बार फिर से बता दें, हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को रोकना और लोगों को सुरक्षित खाद्य आदतों के प्रति जागरूक करना है। दुनिया भर में लाखों लोग हर वर्ष दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं। स्वच्छता और सावधानी अपनाकर इन समस्याओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और श्रोताओं, जिस तरह गणित विषय के सूत्र होते हैं, रसायन के सूत्र होते हैं, भौतिकी के सूत्र होते हैं, उसी तरह सुरक्षित भोजन के भी सूत्र होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहला तो ये कि भोजन जब भी बनाया जाए तो पहले सब्जियों को काफ़ी अच्छी तरीके से धो लिया जाए। और सबसे पहले तो हमें अपने हाथों को धोना होगा, और भोजन बनाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। कच्चे और पके भोजन को अलग रखें। भोजन को अच्छी तरह पकाएं। सुरक्षित और स्वच्छ पानी का उपयोग करें और भोजन को उचित तापमान पर सुरक्षित करें। श्रोताओं, भारत है कृषि प्रधान देश। खेत से लेकर थाली तक भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दुकानदार, होटल संचालक और उपभोक्ता, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि खाद्य श्रृंखला का कोई भी एक हिस्सा लापरवाह हो गया तो भोजन दूषित हो सकता है। और दैनिक जीवन में हम सभी कुछ सावधानियां अपनाकर बीमारियों से स्वयं को और अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला तो सड़क के किनारे खुला रखा हुआ भोजन कभी भी ग्रहण ना करें, क्योंकि ये संक्रमण का कारण बन सकता है। कटे हुए फल लंबे समय तक खुले में रखने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, और गंदे पानी से धोई गई सब्जियां कई बीमारियां फैला सकती हैं। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम खाद्य सामग्री बाजार से खरीदते हैं तो पैकेट पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट भी अवश्य देखें। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखें और बच्चों को स्वस्थ और ताज़ा भोजन दें। सुरक्षित भोजन केवल विकल्प नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन की आवश्यकता है। आइए श्रोताओं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम स्वयं भी सुरक्षित भोजन अपनाएंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, इस संदेश के पहले आपने सुना कुमार सानू की आवाज में फिल्म शिकारी का गीत, शब्द समीर के थे और संगीत हिमेश रेशमिया का था। श्रोताओं, आज विश्व देखभाल दिवस भी है। जी हाँ, हर साल 7 जून को विश्व देखभाल दिवस वर्ल्ड केयरिंग डे मनाया जाता है। यह दिन लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति और देखभाल का भाव विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन की शुरुआत 2022 में कैरिंग ब्रिज संस्था के द्वारा की गई थी। बाद में इसे 7 जून को हर साल मनाने की घोषणा कर दी गई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों में संवेदनशीलता और करुणा बढ़ाना, परिवार, मित्रों और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना, बीमार, वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सभी लोगों को प्रेरित करना और देखभाल करने वालों के योगदान का सम्मान करना। श्रोताओं, इस दिन हम सभी को क्या करना चाहिए, इस पे भी हम कई बातों पर अमल कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, अपने परिवार और मित्रों का, रिश्तेदारों का हालचाल अवश्य पूछें, वृद्धजनों के साथ समय अवश्य बिताना चाहिए, बीमार व्यक्ति का मनोबल भी हम बढ़ाकर एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं और प्रेरणादायक संदेश साझा कर सकते हैं। और आज के लिए यही संदेश है हम सभी के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ी मानवता किसी की सच्चे मन से की गई देखभाल है। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और सहायता का छोटा सा हाथ किसी के जीवन में बड़ी खुशियाँ ला सकता है। आइए श्रोताओं, विश्व देखभाल दिवस पर हम सभी प्रेम, करुणा और सहयोग का संकल्प लें तथा अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें।
3: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हमें लगता है कि ये गीत हमारे ही परिवार के लिए बना है, और इस गीत को सुनकर निश्चित ही हमारी आंखें नम भी हो जाती हैं और चेहरे पर मुस्कान भी आती है। हमारे सभी श्रोता साथियों के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि हम सभी अपने परिवार के साथ इसी तरह मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में, हर मुश्किल परिस्थिति में खड़े रहें।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
0: श्रोताओं, इस संदेश के पहले हमने सुना हम फिल्म का गीत। आवाजें थी सुदेश भोसले, उदित नारायण और मोहम्मद अजीज की। शब्द आनंद बख्शी के थे और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
2: हेल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर

0: आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
0: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं।

श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों की एक बहुत ही सादगी से भरी अभिनेत्री अमृता राव का भी जन्मदिन है। उनका जन्म 7 जून 1981 को हुआ था। उन्होंने सन 2002 में राज कंवर की फिल्म अब के बरस से बॉलीवुड में कदम रखा था, पर उन्हें असली पहचान 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क से मिली, जिसमें उनके अपोजिट शाहिद कपूर थे। इसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। और इसके साथ ही साथ सूरज बड़जात्या की एक फिल्म आई थी विवाह सन 2006 में। इस फिल्म में उनके पूनम के सादा और पारंपरिक किरदार ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। इस फिल्म के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हम आपको सुनवा रहे हैं अमृता राव पर फिल्माया गया फिल्म विवाह का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म विवाह का गीत। और अब श्रोताओं, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पायदान की ओर।

0: रूप कुमार राठौड़ के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर का गीत, शब्द जावेद अख्तर के थे और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी गीत के साथ ही गुंजन कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना सिन्हा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल।

होंगी और घरेलू गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर संभाग की समीक्षा बैठक में कहा है कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए और इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। मुख्यमंत्री ने नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 7 करोड़ रुपये की लागत से तेल नदी पर एनीकट निर्माण की स्वीकृति दी गई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही हैं। श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। CBSE ने बताया कि आज छात्र मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, कोप्पल, अनंतपुरम, चेन्नई है। एक सीजनल द्रोणिका सूरतगढ़, रोहतक, रीवा, रांची, कैनिंग और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के आसपास एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके असर से आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का साहस, दुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए की टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। और कोरबा जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग के विशेष उड़न दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के 15 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त 14 वाहन और मशीनें जब्त की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी और घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोता, हम आपको तापमान की सूचना दे रहे हैं। स्थानीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का

थोड़ी देर में आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। 11:05 पर पेश करेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

बालिकाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम प्रसारित करेंगे दोपहर 1:10 पर। इसमें बातचीत के अलावा सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम, बात करें, गीत सुने और घर आंगन मेल। श्रोता साथियों के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज सुनिएगा दोपहर 1:40 पर।

शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन सकेंगे। भजन संध्या कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:05 पर और युवा श्रोताओं की युवावाणी शाम 5:30 बजे। इसमें आज के आकर्षण होंगे युवा सोच और युवा पसंद। जिले की चिट्ठी शाम 6:05 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे शाम 6:30 पर। विधिक सहायता पर केंद्रित कार्यक्रम कानून की बात, इसमें आज का विषय है संपत्ति विवाद के संबंध में। वक्ता श्री आशुतोष द्विवेदी, अधिवक्ता जगदलपुर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा सुनिएगा शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल रोजाना की तरह शाम 7:20 पर। इसमें पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व, इस विषय पर सामूहिक चर्चा के अलावा सुनिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जानकारी। साथ ही सुनिएगा कुछ किसान समाचार, कृषि संबंधी खबरें, लोकगीत, मंडी भाव और मौसम की जानकारी। रात 8 बजे श्रोताओं पेश करेंगे आप सभी का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम जिसका नाम है सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। रात 9:15 पर चित्रपट संगीत आप सुनेंगे। आज रात 9:30 रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा। इसमें आज आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी का कर्नाटक शैली में गायन। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म खामोशियां के इस प्यारे से गीत से।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: दे भाई नगा तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ये दे आगु तो ये दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

जावेद अली की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म लैला मजनू का गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं एक बार फिर से जावेद अली की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज़।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव और FM बैंड पर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म धुरंधर से। आवाजें हैं खान साहब और

शाश्वत सचदेव की। शब्द रचना नुसरत फतेह अली खान की है और संगीत शाश्वत सचदेव का है। आइए सुनते हैं ये गीत।

खान साहब और शाश्वत सचदेव के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म धुरंधर का गीत। अगला गीत ये सुनते हैं के की आवाज में। फिल्म का नाम है जहर, अ लव स्टोरी।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म आदि पुरुष का गीत। शब्द रचना मनोज मुंताशिर की थी और संगीत निर्देशन अरय अतुल का था। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, श्रेया घोषाल और मनन भारद्वाज की आवाजों में। फिल्म का नाम है एनिमल। गीत और संगीत मनन भारद्वाज का है।

श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म जैकपॉट का गीत। शब्द तुराज और अजीम सिराज के थे और संगीत निर्देशन शारिब और तोशी का था। अगला गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम है मर जावां।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म नए तराने का गीत। आइए अब सुनते हैं पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह के युगल स्वरों में फिल्म आशिकी 2 का गीत। शब्द और गीत मिथुन का है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाजों में फिल्म आशिकी 2 का गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाजों में फिल्म काशी का गीत। शब्द रचना उपेंद्र कुमार की है।

सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म काशी का गीत। इसी गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और दोपहर 1:40 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज, 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आपकी नज़र होगी, और महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम प्रसारित करेंगे 2:10 पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने वाले हैं। कुछ पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ

0: अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए

0: और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी TDP ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और TDP सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 102 ओवर में 5 विकेट पर 456 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आज कार्यक्रम में पहली फरमाइश आई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन दिवांगन, कौशल्या दिवांगन, हेमलता दिवांगन, डिंपल दिवांगन। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बीबी अनिष्का, राधिका गजभिये। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से हमारे श्रोता साथी हैं संतोष खड़ से, विनोद खड़ से। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका, वंश बत्ता। धरसीवा छत्तीसगढ़ से छेदूलाल दिवांगन, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, इकबाल कुरैशी, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से इस गीत को सुनना चाहा है छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, खुशी, प्रवीण कुमार साहू।

पिता अभिनव यादव और सीएल यादव ने। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

लीजिए अब सुनते हैं दिल्ली सिक्स फिल्म का एक गीत जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज में। शब्द रचना है प्रसून जोशी की, संगीत निर्देशन है एआर रहमान का। सुनना चाहा है इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी। पोटिया कला दुर्ग से हमारे श्रोता साथी हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगली फरमाइश आई है ग्राम भुरसुदा से, भगवानी संतोषी ज्योति गजेंद्र चंद्र प्रकाश और सेन परिवार की। औरंगाबाद से इस गीत को सुनना चाहते हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और बेबी वान्या सिंगरौल। ग्राम परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी, खुमेंद्र मसिया। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ही हमारे

श्रोता साथी हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। पुणे से इस गीत को सुनना चाहते हैं पंकज कुमार आर्या, प्रियंका मीनाक्षी और चंद्रप्रभा। तो आइए लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में बोल हैं देव कोहली के।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। अगले गीत की फरमाइश आई है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से। मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति की। ग्राम कालापारा जिला सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, दशरथ गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रकृति गुप्ता और रामाधर रजवाड़े। सिमंदर पार्क विरमगाम से इस गीत को सुनना चाहते हैं अजीत, प्रेमिला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा और जैमिन भावसार, कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, ये हमारे श्रोता साथी हैं दिल्ली शहर से। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र सेन। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर पेश है किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और आर डी बर्मन के संयुक्त स्वर में सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत। बोल लिखे हैं राजिंदर कृष्ण ने, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

लीजिए पेश है नमक हलाल फिल्म का एक गीत आशा भोसले की आवाज में। बोल है अनजान के, संगीत है बप्पी लाहिरी का। सुनना चाहा है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे और नारायण भाव खर्चे। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन और राजू देवांगन। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बिरडी से इस गीत को सुनना चाहते हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनिया करमरकर। पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से इस गीत की फरमाइश की है पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर ने।

लीजिए अब सुनते हैं ये गीत। फरमाइश करता है बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता बीबी, स्वाति माखीजा और इनका पूरा परिवार, शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर, खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समर राज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा, श्रृंगी ऋषि आश्रम श्रीहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, फुलसाय व्याह कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा से नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश रुकमणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य, कुमारी सानवी और इनके परिवार के सभी सदस्य गौरीनगर इंदौर से इस गीत को सुनना चाहते हैं। आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर पेश है मैं हूं ना फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अल्ताफ साबरी, हसीम साबरी और सोनू निगम की। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म गोलमाल 3 से। आवाजें हैं शान और अनुष्का मनचंदा की, बोल हैं राकेश कुमार के, संगीत निर्देशन है प्रीतम का। इस गीत की फरमाइश की है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश और साक्षी मनन तानिया ने। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या, भाई सुच्चा पाठक।

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। अब समाचार विस्तार से। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही हैं। श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष

के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विश्वविद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। CBSE ने बताया कि छात्र आज रात मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों की 13 पारियों में 57.3 के औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन के कमीशनिंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेकर ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल को एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू रसोई गैस कीमत में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। पेश है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अदनान सामी की आवाज़ में इस गीत के साथ। बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन हैं अदनान सामी का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी

0: अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज़ में, ये गीत लिखा था सईद असलम ने। मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। अगला गीत है सोनू निगम की आवाज़ में, बोल हैं अजय सिंघरण के, संगीत निर्देशन है रवि पवार का।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर जा

0: लगे।
1: हाँ
0: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने,
1: कौन कार्यक्रम ला?
0: ये दे किसान वाणी,
1: हाँ
0: तेकर में ये दे जानकारी भेटाइस नहीं,
1: हाँ
0: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब ये दे विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में
1: हाँ
0: आए,
1: हाँ
0: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के, तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं
1: हाँ
0: तहा तो।
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही।
0: हम्म,
1: ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच
0: हो
1: और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कहीं तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं।
0: हो
1: अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला ये दे सुन सकते हैं।
0: हाँ अभी तो शुरू है कि सहे।
1: हाँ
0: हम्म,
1: तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान
1: किसान
0: वाणी।
1: वाड़ी।

श्रोताओं, वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, जिसे हमने लिया है दलेर मेहंदी की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार हैं दलेर मेहंदी।

0: कार्यक्रम सबरंग के अंत में अभी आप सुन रहे थे दलेर मेहंदी की आवाज़ में ये गीत। इसी के साथ ही मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आप मन के गीत हम आपसे कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे ज्योथिका रॉय के स्वर में गीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम सुनैया जम्मू श्रोता संगवारी मन के हम स्वागत करत हन आज के कार्यक्रम में। आओ ये कार्यक्रम ला लेके आज आपके संग में मैं हूँ अनुभा अग्रवाल। तो स्वीकार करो मोर माया ले भरे राम राम। कार्यक्रम के पहला गीत ला सुनाए पर हमला पत्र के माध्यम ले फरमाइश भेजी हैं भाटापारा ले बचकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर सोनाडीले सुब्रत चौधरी ग्राम खट्टी महासमुंद ले हैं सुभाष छाया शर्मा एसोराम साहू मालती अवलोकेश साहू हटरी बाजार भाटापारा ले मोहम्मद जावेद एकता यदु पूजा यदु और रेशमा निषाद बाजार पारा बेमेतरा ले हैं भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार और लक्की सिन्हा रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश करुणा वर्मा शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश सचिन अववाणी वर्मा गंडई टिकरीपारा ले जागेश्वर देवांगन कचरीबाई देवांगन दीपक कुमार जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन ग्राम बुड़गहन ले हैं रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला उषशिकांता प्रजापति ग्राम बेलरगांव ले मिथलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु औ अंकित देवांगन और यही गीतला सुनाए बर हमला ईमेल पठोइन है। ग्राम सलोनी घुमका ले देवचरण साहू हेमा साहू ग्राम गणौदा जालबांधा ले पारकदास साहू किरण साहू ग्राम पथरिया धमधा ले हैं शेष नारायण औ पिंटू साहू ग्राम नागर कोहरा राजनांदगांव ले झग्गर राम साहू जामुन देवी समीक्षा आराध्या साहू यहीं ले हैं प्रेम पूजा दुष्यंत औ प्रांजल साहू डबरापारा सौंगा मगरलोड ले कोमल तोषण विनायक सेन कोड़ापार अभनपुर ले हैं नारायण सेन पंकज कुमार सेन महासमुंद ले

झुमुकलाल देवांगन अवमंजू चतुर्वेदी के गाए गीत ला सुने पर हमला फरमाइश पठोइन हैं। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया ले दरियाना मल अनीता मोटवानी राजेश मुकेश मोटवानी नागपुर ले हैं अशोक कुमार सावलानी पटपर डोंगरगढ़ ले रामगोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार ध्रुव कविता उजयंत्री ध्रुव नर्मदा धाम सुरसुली ले कैलाश यादव सुरेश टिकेंद्र योगेश यादव करही भदर ले हैं पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा शारदा निर्मलकर लोचन विद्यार्थी गीतिका गुड़िया लल्ली और गिन्नी डोंगरगांव और राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का उतनमय गजभिये नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत सीमा शारदा दामिनी वर्मा भाटापाराले राधेश्याम टेलर जितेंद्र साहू देवरी भाटापाराले हैं गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री बेमेतरा मुलमुलाले नेतराम साहू मनीराम लक्ष्मी बिंदु डिम्पल रमेश्वर साहू ग्राम पंचायत गोंधला उदयपुर ले हैं जीवधन सिंह पैकरा धुरनी करिश्मा कलेश्वर सोमार साय पैकरा बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा सुजान वर्मा लोरमी ग्राम चचेड़ी ले जगदीश सिंह मरावी सावित्री चमन अमन सुमित मरावी ग्राम सिवनी खुर्द रेंगाखार ले तातू रामपाल के मथुराबाई हेमंत अवचंद्रहास

पालके, बाबा कुटी उफ्रा पाटन ले यमुना हेमलता तुलसी गोपी साहू, संतोषी नगर रायपुर ले रोशन गोपाल आकाश अवसाक्षी ठाकुर, भरदाकला साजा ले हैं रोम कुमार साहू किरण साहू, जूट मिल रायगढ़ ले तुलसी सोनम मोहन रेशमा सोहन बागड़िया, यवतमाल विदर्भ ले संतोष और विनोद खटसे।

धमनी राजीम लेहें दुष्यंत कुमार और आशीष कुमार पंजारे ग्राम जैसा कर्रा चारामाले असाड़ू राम खिलावन और ऋषभ निषाद।

महागाव यवतमाळले संतोष अविनोद खडसे, बठेना पाटणले अनिता नीलू वर्मा, ग्रामबन बघिराले योगेश औ आशा सारवा, संबलपूरले हे मास्टर दिव्यांश साहू गुड्डू साहू, कोटा रायपूरले अरुण अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा औ दिनेश सेन, रामनगर रायपूरले हे राजेश अंबादे शशिकला औ पूजा अंबादे, भिलाई जामुल्ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय औ पूजा प्रधान, चूड़ी लाइन भाटापाराले अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम औ मोहम्मद साजिद, रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई लेहे सुशील जैन कल्पना श्रेया सौरभ शौर्य औ शुभम जैन, लच्छनपुरले रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश औ मुकेश कुमार साहू, लालपुर मारोले कीर्ति कुमार ध्रुव संतोषी ध्रुव, बीजेतला जालबांधाले भिनेश्वरी सुनीति कुमारी बाई देवांगन औ मथुराबाई यदु, कुल्हारीकोट पांडुका लेहे नरोत्तम कश्यप नीतू कश्यप, भैंसमुंडी मगरलोडले खेमेश्वरी कुमारी बाई, यहीं लेहे भागवत राम औ तुलेंद्र कुमार। आप सब सुनना चाहत हो कृष्ण कुमार पाटिल औ साथी के गाए ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप मन सुनत हो छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत। कार्यक्रम के अगला गीत पर हमला फरमाइश ये श्रोता मन के मिली है। लाखा टोला बिडोरा ले मनु यादव, दुर्गेश गोपीचंद मुस्कान रुक्मणी यादव, सहसपुर लोरमी ले छोटकू साहू राम साहू लोकेश संतोष अभिषेक विश्वकर्मा, लोहारीडी जिला कवर्धा ले हैं अशोक कुमार लीलेश्वरी खुशान तौ निशांत साहू, लोरमी ग्राम करुहा नारले गोमती औ काजल रजक, धमनी राजिम ले हैं दुष्यंत कुमार बंजारे आशीष कुमार बंजारे, खमार मुड़ाले शिवाय गिरी गोस्वामी एकांशी गोस्वामी, यहीं ले हैं सतीश गिरी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी, लोरमी ग्राम तिलकपुर ले चंद्र कुमार चंद्रेश कुमार मालती मयंक मरावी, भाटापारा ले हिमकेश्वर करण राहुल और चंपा साहू, भंवरपुर बसना ले हैं राधेश्याम चंपा राजू नेहा और जगदीश देवांगन, गंडई पंडरिया ले दरियाना मल मोटवानी अनीता राजेश मुकेश मोटवानी, भूतकछार लोरमी ले दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम और धनराज मरकाम, उच्च भट्टी बिलासपुर ले मुकेश मधु आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी, सिमगा ले हैं रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सनी कोमल यादव, पहांदा कोरबा ले समय लाल कुर्रे सावित्री देवी कुर्रे, सरक बुंदिया ले गब्बर साहू निर्मला देवी साहू, कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन प्रभा देवी देवांगन, हटरी चौक बिलाईगढ़ ले हैं खीख राम देवांगन रेणु रजनी औपिंग की देवांगन, सिर्री गातापार ले लावण्या साहू उपासना देवराज ओम कुमार पुष्पराज औ प्रभु राम साहू, औ बिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल भाव्या औ प्रियांश देवांगन। आप सब सुनना चाहत हो लखन नेताम औ सीताराम वर्मा के गाए ये गीत ला।

कार्यक्रम के आखिर में आप मन सुनवावथन नाचा गीत जे लगावत हे महासिंह चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार और फरमाइश आप सबके हे बिहारी कॉलोनी लोनीले परवीन डोम सरफुरुद्दीन डोम कुमारी वली डोम कुमारी डब्लू डोम जेल रोड मथुरा ले हैं वसीम आसमा बेलदार अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार ग्राम सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले हेमा दामले कांतिबाई राजेंद्र कुमार दामले ग्राम चनागांव धमतरी ले लालिमा मरकाम जयंती शोरी आशीष नेताम कोमल शोरी नंदलाल मरकाम धवलपुर ले धनंजय मिश्रा अर्चना मिश्रा चंद्रकांती अवगेंदलाल मिश्रा ग्राम पंचायत बठेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौद ले सुजान वर्मा सुहद्रा आयुषी अवकृत वर्मा दतरेंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु लक्ष्मीणा यदु दरचूरा ले फिरंता साहू दुलौरीन साहू कामेश्वरी औ प्रीतम कुमार साहू औ मोपका भाटापारा ले हैं दयालु राम तेज राम वर्मा सहदेव रामजी औ चिरंजीवी वर्मा।

यही गीत संग अब होवत हे हमर जाए के बेरा। फिर जाए के पहली आप मन ला बता दन आज के कार्यक्रम में गीत ला जोड़े रहिन बीरभान साहू। तो अब देवो अपन संगवारी अनुभा अग्रवाल ला बिदा। जय जोहार।

0: आप मन के गीत छत्तीसगढ़ी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के एक हिंदी समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर

छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है।

0: जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए दो ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बात में लीजिए सुनते हैं जैविक खाद आज की आवश्यकता विषय पर सामयिक सुझाव।
2: जैविक खाद आज की आवश्यकता। पिछले 20 वर्षों के कृषि के विकास आंकड़ों को देखें तो हमारा उत्पादन 2 गुने से अधिक बढ़ा, लेकिन उर्वरकों का उपयोग 7 गुना एवं पेस्टिसाइड का उपयोग कई गुना बढ़ चुका है। पिछले 35-40 वर्षों में रसायनों के उपयोग से पर्यावरण, वातावरण, भूगर्भ जल, जलीय जीव जंतु, पशु पक्षी, खेती में लाभकारी जीव जंतु का संतुलन बिगड़ने लगा। खेती में अदानों से भरपूर उपयोग के बाद भी उपज को बनाए रखना एक समस्या हो गई। विश्व का ध्यान प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने वाली कृषि पद्धति की ओर गया। इस पद्धति को ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दिया गया। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ रसायन विज्ञान में प्रयुक्त ऑर्गेनिक या कार्बनिक से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक का संबंध सूक्ष्म जीव जंतु से है। वस्तुतः ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही अर्थों में जैविक खेती, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि जैसे शब्दों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैविक खेती का मूल मंत्र खेती में रसायनों के प्रभाव को रोकना। हरित क्रांति के बाद खेती में विभिन्न रसायनों वाले आदानों का भरपूर प्रयोग, रसायन युक्त कंपोस्ट, सीवेज के पानी और अवशिष्ट पदार्थों में भारी तत्वों, कीटनाशी, कृषि रसायनों आदि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा। इससे उपज में स्थिरता या बहुत कम बढ़ोतरी, कीट व्याधि का बढ़ता प्रकोप, फसलों के उत्पाद में कीटनाशक के अवशेष, प्राकृतिक संतुलन फायदेमंद पर भक्षी परजीवी जीव जंतु का नष्ट होना, मृदा स्वास्थ्य का खराब असंतुलन की स्थिति होने, खेती के आदानों जैसे उर्वरक, निदानाशक, कीटनाशक में अत्यधिक खर्च जैसी समस्या आने लगी। इन बातों को रोकना ही जैविक खेती का मूल मंत्र और सिद्धांत है। जैविक खेती का अर्थ रासायनिक उर्वरक, कीट व्याधि नाशक के बिना खेती करने से है। यदि रासायनिक आदानों का उपयोग नहीं करना है, तब हमें अच्छी पैदावार के लिए कुछ सस्य क्रियाओं पर ध्यान देना होगा, जिससे खरपतवार, कीट व्याधि का प्रकोप कम हो। यदि हम परंपरागत खेती करें तो उपरोक्त सभी बातों का रोकथाम के उपाय उसमें निहित है, लेकिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के करीब पुरानी किस्में अधिक उत्पादन के लिए असरकारक नहीं थी। इस पद्धति में नई किस्मों में पोषक तत्व, कीट व्याधि, खरपतवार का नियंत्रण जैविक कृषि के अंतर्गत है। इसके लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर, हरी खाद आदि का उपयोग पोषक तत्व आदि के लिए किया जाता है। जैविक खेती यानी आत्मनिर्भर खेती। जैविक खेती की परिकल्पना में मुख्य उन बातों का समावेश है जिसमें फार्मिंग स्टीम खेती कहा जाता है, जिसमें खेती सभी आदानों जैसे खाद, पानी, कीटनाशक आदि खेत में ही होता है, जिसे हम ऑन फार्म इनपुट्स

0: प्रबंधन भी कहते हैं। बाहरी आदानों पर कम से कम खर्च किया जाता है और खेती के सभी साधनों को एक चक्र रूप में उपयोग किया जाता है। किसान खेती के लिए साधनों की अपेक्षा अपने साधनों पर अधिक से अधिक निर्भर होता है। जैविक खेती के लिए शस्य प्रबंधन, समय पर बुआई, अलग अलग फसलों के लिए तथा अलग अलग क्षेत्रों के लिए बोनी के समय की सिफारिश की गई है, जिससे कीट व्याधि के प्रकोप से बचा जा सके। अतः फसल एवं क्षेत्र के अनुसार समय पर बुआई करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी की जुताई तथा नींदा के अंकुरण के बाद पुनः जुताई कर बुआई करना चाहिए, जिससे खेत में नींदा का प्रकोप कम होता है। सही किस्मों का चुनाव, यदि क्षेत्र विशेष में किसी कीट व्याधि का प्रकोप ज्यादा है तो प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु यंत्रों का प्रयोग, संभवतः कतार में बोनी करें तथा नींदा नियंत्रण हेतु कतार में चलने वाले हस्त चलित कृषि यंत्रों का उपयोग करें। सही फसल चक्र, फसल चक्र में दलहनी फसलों का चुनाव अवश्य करें, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति तथा संरचना बनी रहे। स्वच्छ खेती, ज्यादातर कीट खेत की मेड़ों पर तथा घास फूस पर पनपते हैं और अंडा देते हैं। अलग अलग कीट व्याधि का परपोषी अलग होता है। जिस फसल की खेती कर रहे हैं उसके कीट व्याधि के नियंत्रण की कर्षण यांत्रिक तरीके की जानकारी एकत्र करें तथा स्वच्छता रखकर उस पर नियंत्रण करें। लगातार एक ही फसल न लें। फसल चक्र या फसल प्रणाली का चक्र निर्धारित करते समय ध्यान रखें, लगातार एक फसल या एक ही कुल की फसल एक ही खेत में न लें।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद आज की आवश्यकता विषय पर सामयिक सुझाव। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 होने को हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को मधु का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, ईश्वर की बनाई इस धरती पर सब कुछ अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ स्थापित है और ऐसी ही विशेषता से परिपूर्ण है हमारे जीवन का आधार, हमारे जल स्रोत। हम सब ये जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है बहनों, और हम ही क्यों, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन का आधार ही जल है। और कल एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है बहनों, कल यानी कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। महासागर हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है बहनों, और पृथ्वी पर सभी जीवों का अस्तित्व इन्हीं पर निर्भर है। ये केवल हमें पीने योग्य पानी ही नहीं देते बल्कि भोजन भी देते हैं, और साथ ही जलवायु को नियंत्रित करने और सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत भी हैं। बहनों, महासागर पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखते हैं, सूर्य की गर्मी को अवशोषित करते हैं और समुद्री धाराओं के माध्यम से दुनिया भर में तापमान और मौसम चक्र को नियंत्रित करते हैं। ये महासागर ही हैं जो इंसानी गतिविधियों से निकलने वाली विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जिससे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम हो जाता है। बहनों, बहुत से खनिज दवाइयाँ इनसे मिलते ही हैं, साथ ही दुनिया की एक बड़ी आबादी प्रोटीन के लिए समुद्री भोजन पर निर्भर है। आपको पता है बहनों, हमारी पृथ्वी के जल चक्र का सबसे बड़ा हिस्सा महासागर ही है, जो वाष्पीकरण के माध्यम से बादलों का निर्माण करते हैं और बारिश के रूप में मीठा पानी हमको देते हैं। दुनिया का अधिकांश व्यापार शिपिंग के माध्यम से महासागरों के जरिए होता है। इसके अलावा ये पर्यटन का केंद्र भी है बहनों, और इन सभी विशेषताओं और महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों जैसे कि खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 2009 में की गई। इस दिवस के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए महासागरों के संरक्षण और उसके महत्व और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न शैक्षिक सेमिनार, जागरूकता अभियान और समुद्र तटों की सफाई जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वैज्ञानिक संगोष्ठी सेमिनार के माध्यम से समस्त पढ़ने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा कर हल निकाल

का प्रयास भी किया जाता है बहनों। हम भी चाहें तो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्लास्टिक जैसे अन्य और भी उत्पादों का प्रयोग बंद करके पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद का प्रयोग करके सहयोग कर सकते हैं, तो स्वयं भी इस दिशा में जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। हम बातें और भी करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बहनों, अब बारी है हमारे अगले क्रम की, जो है हमारा फोन इन बात करें गीत सुनी क्रम। लेकिन इसके पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे कि बच्चों के स्कूल की शुरुआत हो रही है, तो गर्मी की छुट्टी के समय में बहनों उनका

जो समय का जो आप देखती ही होंगी कि हमारे बच्चे जो हैं समय के अनुसार उठते नहीं हैं या फिर अपने कामों को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अब स्कूल चालू होने वाले हैं तो अभिभावक की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस ओर ध्यान दें। तो हमारी बहनों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि पहले से उनके समय को हर दिशा में सुनिश्चित करें ताकि वे अपने काम को ठीक तरीके से समय पर कर सकें। और अब चलते हैं अपने इस क्रम की ओर, जो है फोन इन बात करेंगी सुनिक्रम।

0: आज के इस फोन इन बात करें गीत सुने क्रम में आपका स्वागत है बहनों। कहते हैं कि शब्दों में ताकत होती है, शब्दों में हिम्मत होती है और शब्दों में ही निहित होती है हमारे मन की भावनाएं। और अपने फ़ोन कॉल के माध्यम से आज के हमारे इस फोन इन बात करें गीत सुने क्रम में जुड़कर हमारी जो बहनें हैं वो अपनी मन की बातों को हमसे साझा करती हैं और साथ ही सुनती हैं अपनी पसंद के गीत भी। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारी बहनें हमसे क्या कहना चाह रही हैं। हेलो
1: मैडम,
0: कौन बात कर रही हैं जी?
1: मैं आपका मैं अंबिकापुर से बोल रही हूँ, रूबी।
0: बहुत बहुत स्वागत है रूबी जी आपका हमारे आज के इस फोन इन बात करें गीत सुने क्रम में।
1: 10:30 बजा तो मैं बोली थोड़ा लगा के देखती हूँ मैडम लोग से बात करने के लिए।
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने हमारे कार्यक्रम में फोन किया। तो बताइए आज हमारी बहनों से क्या कहना है आपका?
1: अभी तो चलो मौसम एकदम अच्छा ही हो गया है, बारिश हल्का फुल्का रोज गिर रहा है
0: जी,
1: ज्यादा धूप भी नहीं है
0: जी, बिल्कुल गर्मी से थोड़ी राहत है।
1: अपना काम जो भी काम करे अपना बढ़िया अपना सब वो करके करे। खेती बाड़ी भी जाती है तो कम से कम सिर में गमछा उमछा डाल के जाए, पानी फिर भी पिए, अभी गर्मी तो है ही है
0: जी। आप क्या करती हैं रूबी जी?
1: मैडम मैं तो कुछ नहीं करती ही, सब फूल पौधा पेड़ पौधा लगाई हूँ, फल का कुछ पेड़ लगाई हूँ। मेरा आदत है कि पौधा एक लगाना अनिवार्य है, बच्चों की तरह सींचती हूँ जब तक नहीं फल देता है।
0: बिल्कुल, और यही हमारे
1: देखिए मैं एक ठो नाशपाती का पेड़ लाई थी अंबिकापुर से
0: जी,
1: वो नाशपाती अभी फल रहा, लेकिन पता नहीं मैडम दो बार तो अच्छा फल दिया लेकिन अभी जो नाशपाती फल रहा फला तो बहुत है
0: जी,
1: लेकिन पता नहीं कहे काला काला हो जा रहा है, खाने में मजा ही नहीं आ रहा है। बीही तो बहुत फलता है, केला वाला भी जैसे फलता है तो यहाँ लोग लेने आते हैं भाई जिन देखने के लिए, तो ले जाते हैं 2-3 कांडी एक साथ में
0: जी। यदि आप उसके बारे में ठीक तरह से पूरी जानकारी लेकर के उसका ध्यान पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगी तो हो सकता है कि आपको लाभ जरूर मिले।
1: तो ये मेरा थोड़ा किचन गार्डन भी मैं की हूँ, जैसे अभी इस साल बरसात में ये थोड़ा लौकी कोहरा लगाई थी तो कोहरा भी इस साल बहुत फल गया। हाँ ज्यादा नहीं गाड़ी थी, 2 ही पेड़ गाड़ी थी तो 8 कोहरा फल गया, लौकी फल गया। तो बेचने उचने का काम तो नहीं करते हैं, वही गांव में बांट देती हूँ, सबको अपना अपना सब्जी खा लेते हैं।
0: जो घर के जो फल फूल होते हैं वो काफी ताजे होते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होते हैं, तो इस्तेमाल आप किचन गार्डन लगा करके जरूर कर सकती हैं। कार्यक्रम के बारे में और कुछ कहना है आपको?
1: कार्यक्रम के बारे में तो बहुत कुछ कहना है और क्या बोलूं, आप एक तो गीत सुना दीजिएगा। चलिए मैडम धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद से ये गीत।

0: हेलो,
1: हाँ, कौन बात कर रही हैं?
0: मैं चांदनी बात कर रही हूँ, पस्ता
1: कहाँ से बात कर रही हैं?
0: से, बलरामपुर
1: है आपका
0: जिला
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस फोन इन बात करें गीत सुनने क्रम में। क्या करती हैं चांदनी आप?
0: से। मैं हाउस वाइफ हूँ।
1: अच्छा, तो आज हमारे कार्यक्रम में फोन की हैं आप, तो क्या कहना चाहती हैं आज हमारी बहनों से?
0: बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी आपका नंबर,
1: जी
0: तो अभी जाके लगा है। मैं बहुत दिनों से मतलब सुनते आ रही हूँ
1: जी
0: कार्यक्रम,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों से कुछ कहना चाहेंगी?
0: हाउस वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई और करूँ,
1: जी
0: और हमारे आसपास का मतलब जो भी महिलाएं हैं वो भी आगे अपने पढ़ाई करें और आगे अपने मतलब बढ़ें।
1: जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बहनों के लिए पढ़ाई करना, अपने पैरों पर खड़ा होना और सशक्त बनना, क्योंकि शिक्षा ही एक सशक्त होने का माध्यम है। तो ज़रूर शिक्षित
0: हाँ
1: होना चाहिए और हमें भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करनी चाहिए उन्हें जागरूक कर सकें शिक्षा के प्रति। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
0: अखियों के झरोखों से।
1: चलिए फिर, बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद से ये गीत। बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। आगे भी इसी
0: जी
1: तरीके से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर जुड़िए और अपनी बात हम
0: जी
1: तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।
0: जी

0: हेलो।
1: हाँ बताइए, कौन बात कर रही हैं?
0: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है।
1: बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका हमारे आज के इस फोन इन बात करें गीत सुने क्रम में। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आपसे पहले भी बात हुई है।
0: हाँ,
1: बताइए आज हमारी बहनों से क्या कहना है आपका?
0: सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और
1: जी
0: अपने विचार भी व्यक्त करके, क्योंकि मेरे जो विचार है वो अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत लोगों तक पहुँच जाते हैं, तो
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: ये
0: बहुत
1: आप
0: अच्छा माध्यम है मेरे विचार बहुतों तक पहुंचाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, ये हमारी बहनों
0: आकाशवाणी
1: के लिए
0: जो
1: ही
0: है
1: मंच है ताकि वो अपनी बातें
0: तो
1: जो है हमसे और सभी से साझा कर सकें।
0: इसलिए पसंद है मुझे यहाँ पे बात करना।
1: जी बिल्कुल, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। तो आज क्या कहना चाहती हैं?
0: अब तो हमारी छुट्टियां जो है वो खत्म होने वाली है। असल में ये जो बारिश का जो समय है वो बीज बोने का समय है,
1: जी
0: तो बच्चों में भी ये जो शिक्षा का बीज बोने का समय अब आने वाला है। छुट्टी
1: जी
0: खत्म यानी नया सत्र जो है वो शुरू होने वाला है।
1: जी बहुत ही सुंदर बात कही आपने।
0: शुरुआत जो है वो अच्छी हो तो
1: जी
0: आगे भी अच्छा होगा।
1: जी बिल्कुल,
0: मैं पेशे से टीचर हूँ,
1: शिक्षक
0: इसीलिए ये बात कही। अभी हमारा जो है वो शुरुआत है, सेशन
1: जी
0: शुरू होने वाला है।
1: जी
0: हम भी उतने ही उत्साहित हैं जितने हमारे बच्चे भी, हम आशा करते हैं। और अभी शाला प्रवेश उत्सव भी मनाने वाले हैं,
1: जी
0: ये तैयारी चल रही है। हम 16 जून से जो है बिल्कुल एक्टिव होने वाले हैं।
1: जी बहुत ही अच्छा है, नई शुरुआत हर वर्ष होती है और नए उत्साह के साथ सभी जो शिक्षक और जो बच्चे होते हैं वो शाला प्रवेश का जो उत्सव मनाते हैं।
0: हाँ,
1: तो और क्या कहना चाहती हैं हमारी बहनों से?
0: बस मैं बच्चों से यही, बच्चों से भी कहना चाहूंगी और पालकों से भी।
1: जी
0: जैसे सरकारी स्कूल है, शासकीय स्कूलों में थोड़ा बच्चों को नियमित भेजना चाहिए। कभी
1: बिल्कुल, उनका
0: कभी जैसे ये खेती वेती के समय में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो है वो बिजी हो जाते हैं अपने घर की खेती और ये सब काम में, थोड़ा विद्यालय पे भी ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई पे भी। नियमित विद्यालय उतना ही काफी है,
1: जी
0: उससे ही रेगुलर रहने से ही हो जाता है और अच्छी पढ़ाई भी अच्छी रहती है
1: जी
0: और उसके बाद फिर रिजल्ट भी अच्छा आता है, सब सफल होते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे
1: जी
0: बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो
1: जी बिल्कुल, ये माता
0: इसके
1: पिता
0: लिए
1: का
0: शुरुआत से ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी, ये माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य
0: हाँ,
1: के
0: उन्हें
1: लिए
0: नियमित भेजे कम से कम, बाकी
1: जी नियमित रूप से उन्हें
0: तो
1: स्कूल।
0: शिक्षकों को अपना दायित्व पता है, वो करते ही रहते हैं।
1: जी बहुत ही अच्छी बात है और निश्चित ही आपका ये संदेश हमारी बहनों तक जरूर पहुंचेगा और आपको
0: हाँ
1: जरूर इस वर्ष सुधार देखने के लिए मिलेगा उनकी उपस्थिति में, है ना?
0: हाँ
1: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज हमारे कार्यक्रम के? बोल बता
0: सोनाक्षी
1: दीजिए।
0: सिन्हा का है सवार लूप।
1: धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। निश्चित ही आप आगे भी इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगी।
0: बिल्कुल, जरूर,
1: आपका सुनते हैं आपकी पसंद से ये
0: आपको भी
1: गीत।
0: थैंक यू।

तो बहनों, आज का हमारा फोन इन बात करें गीत सुने क्रम बस यहीं तक। अब हमारा आज के घर आंगन कार्यक्रम से भी चलने का समय हो गया है, तो मुझे यानी कि मधु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आपकी ईमेल, आपकी फरमाइश और आपके जज्बात, इन सब की मधुर गूंज लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मृदुल वर्मा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आइए शुरुआत करते हैं संगीत और संदेशों से सजी इस खूबसूरत महफिल की। कार्यक्रम में पहले गीत की फरमाइश आई है विदर्भ श्रोता संघ जलगांव जंक्शन से। दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन की। मुताला महाराष्ट्र से सुरलकर रतनमाला आरती सुरलकर। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी साहू, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू। बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, सराहिल भारती। ग्राम पडोली पोस्ट धौरपुर विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा से प्रथम प्रफुल्ल खंडा, कैरव गर्वी खंडा, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल। बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची तनु करमरकर। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र दांगी। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत राही गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुक टुक। अभयता सिल्लौड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। ग्राम पंचायत महादेवपारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घन

अगले गीत की फरमाइश आई है जेल रोड रायगढ़ से, नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी और उमा तिवारी। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, बाबू भाई। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद बोहरा गाछी। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। बनियापारा धमतरी, छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बीबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डुडवानी। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। मित्रनगर बीड शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े। नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अनिल पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। मछली गोदाम कैडी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, प्यारा मुन्ना हिमाक्ष। मिट्ठूगुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार चंदन। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विनायक चंदेलदास देवांगन, सीतादास, रीतादास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूरसाय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी। अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, शुभम बेंडे। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। रायपुर से नीलू, मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ग्राम सिधमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं के और जयेश गांधी की आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के गीत, बोल हैं इरशाद कामिल के, संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। लीजिए आप सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत आतिफ असलम की आवाज़ में, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत है प्रीतम का। सुनना चाहा है जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर, सुजाता पोहारकर, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगना जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह, पैकरा, बटिंदा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुग्गू, उत्तम नगर दिल्ली से हमारे श्रोता साथी हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बराडा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, कर्माचौक लोहारीडी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, ललिमा साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू, पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं नारायणी सिंगरौल, चंदूलाल सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगली गीत की फरमाइश है आई है ग्राम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति, दक्ष प्रजापति, कुंती मंगलराम एवं रिद्धि सिद्धि प्रजापति की। गांव कुम्हार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन और इब्राहिम की। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। लोरमी ग्राम चंचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ। धनोरा बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु, रिशु, वी चैतन्य, दुर्गेश, अक्षय, अभिषेक नायडू। इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश शर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीता मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती की। तो लीजिए सबकी फरमाइश पर सुनते हैं लूडो फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। प्रीतम के संगीत निर्देशन में बोल हैं संदेश श्रीवास्तव के।

श्रोताओं, वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का और इसकी फरमाइश आई है अकोला से शुएस रॉय, अलका रॉय दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, रघुवीर नगर नई दिल्ली से श्रुति और किरण, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी, ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से इस गीत को सुनना चाहते हैं जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है स्वरूप आनंद सरजल ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे और संदीप बाठे। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू और हेमंत नामदेव। डापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर और सदानंद मंदुरकर। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है राब्ता, आवाज़ है अरिजीत सिंह की, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए आप सुनते हैं स्त्री फिल्म का ये गीत बादशाह और निकिता गांधी की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है सचिन जिगर का। सुनना चाहा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तैड़े वसंतराम भोजने पी एस नवहानकर तुषार करांगले। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा। रामानुजनगर श्रीनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सुखराम सिंह मारावी सुहानी सिंह बिमला सिंह। शाहजीनगर दिगलूर महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे।

0: साथी मृदुल वर्मा को आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त करने की आज्ञा दें। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। January 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम

0: तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के दो विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर

0: बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में छठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में इस गीत के साथ। बोल है महबूब के, संगीत निर्देशन है ललित सेन का।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में इस गीत के बाद लीजिए अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। बोल हैं देव कोहली के, संगीत निर्देशन है बिद्दू का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। लीजिए आप सुनते हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गज़ल। संगीत निर्देशन है बसु चक्रवर्ती का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं अल्ताफ राजा की आवाज़ में ये गीत। लिखा है जमील मुजाहिद ने, संगीत निर्देशन है मोहम्मद सैफी नियासी का।

अल्ताफ राजा की आवाज में इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गंथा यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर आती हमर कोट। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या होगा शाम 5:05 पर। शाम 5:30 पर आप सुनिएगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम कानून की बात आप सुनिएगा शाम 6:30 पर। विषय होगा संपत्ति विवाद के संबंध में, वक्ता श्री आशुतोष द्विवेदी, अधिवक्ता जगदलपुर छत्तीसगढ़। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। लोकगीतों के कार्यक्रम गोदली में शाम 6:20 पर आप सुनिएगा कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप उठाइएगा शाम 7:05 पर। ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व, स्वच्छता से ही स्वास्थ्य और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसके साथ ही क्रम किसान समाचार में आप सुनेंगे कृषि संबंधी सामयिक चर्चाएं। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। कुछ फिल्मी नगमे आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत में रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी का कर्नाटिक गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:03 हुए हैं। इसी के साथ ही ये हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आपको बता दें कि एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। शाम 5 बजे हम अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। ये वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आगाज का। आइए सभा की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, कोल्हुआ, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदर बसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, कुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, बोरो, लैलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 48 है। ये बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, छाल, लोटान, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 54 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट,

0: कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गाँव के आस पास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं दिल्ली 6 फिल्म का ये गीत। आवाज़ है रेखा भारद्वाज, किशोरी एवं सुजाता मजुमदार की। संगीत निर्देशन है AR रहमान का और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए लगान फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर, साधना सरगम एवं उदित नारायण की। संगीत निर्देशन है ए आर रहमान का और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

कार्यक्रम भजन संध्या में अब लीजिए सुनिए अगला गीत अनजाना अनजानी फिल्म से। आवाज़ है राहत फतेह अली खां की। संगीत निर्देशन और गीतकार हैं विशाल शेखर।

कार्यक्रम भजन संध्या में अब आइए सुनते हैं ओ माय गॉड फिल्म का ये गीत। आवाज है कैलाश खेर एवं मीट ब्रोस की। संगीत निर्देशन है कुमार का।

कार्यक्रम भजन संध्या की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में पीके फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है शांतनु मोइत्रा का और गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे।

सोनू निगम की आवाज़ में पीके फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम भजन संध्या बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

रोटी हो या मिठाई, सेहत की बात सबसे ऊपर आई। खाना तभी बनेगा खुशियों की थाली जब उसमें होगी सुरक्षा की रखवाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंचला यादव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चीज़ की जो हर दिन हमारी थाली से जुड़ा है, लेकिन दोस्तों उस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, विश्व सुरक्षा दिवस, यह दिवस है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाने का नाम सुनते ही किसी के दिमाग में समोसा आता है, किसी को गोलगप्पे याद आते हैं और किसी को मम्मी के हाथ का गर्मा गर्म खाना। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही खाना सुरक्षित ना हो तो स्वाद तो मिलेगा लेकिन सेहत का क्या होगा। आज की युवा पीढ़ी को फास्ट फूड बहुत पसंद है। ऑनलाइन ऑर्डर करो, फोटो खींचो और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खा रहे हैं वह कितना सुरक्षित है? खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ऐसा भोजन खाना है जो साफ सुथरा हो, जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया या मिलावट ना हो और जो हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि दोस्तों, स्वाद कुछ मिनटों की खुशी दे सकता है लेकिन खराब खाना कई दिनों की परेशानी भी दे सकता है। अब जरा एक मज़ेदार सवाल सोचिए, अगर आपके सामने एक प्लेट चाट रखी हो और दूसरी तरफ हाथ धोने का साबुन, तो आप किसे चुनेंगे? साथियों, पहले साबुन से हाथ धोइए फिर चाट का मजा लीजिएगा। यह खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यही सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े रोगों से बचा सकती है। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह साफ करना और खुले में बिकने वाले संदिग्ध खाद्य पदार्थों से बचना। याद रखिए, हेल्थ इज वेल्थ सिर्फ किताबों की लाइन नहीं है बल्कि जिंदगी का असली फॉर्मूला है। दोस्तों, आजकल खाने में मिलावट भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कभी नकली मसाले, कभी मिलावटी दूध और कभी एक्सपायर हो चुके उत्पाद। ऐसे में हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनना होगा। कोई भी पैक्ड फूड खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग और गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह हम मोबाइल खरीदने से पहले उसके सारे फीचर्स देखते हैं, उसी तरह खाने की चीज़ें खरीदते समय भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। आखिर शरीर को भी तो अच्छी फ्यूल क्वालिटी चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप अपनी पसंदीदा डिश का आनंद लें तो एक बार यह जरूर सोचें कि वह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सुरक्षित भी है या नहीं। तो स्वाद के साथ सुरक्षा का तड़का लगाइए और अपनी सेहत को बनाइए सुपरहिट। इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म हाईवे से ज्योति और सुल्ताना नूरान की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। संगीतकार हैं AR रहमान, गीतकार हैं इरशाद कामिल।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये जवानी है दीवानी का खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम में युवा पसंद की ओर। स्वागत है आप सभी का क्रम युवा पसंद में। न जिम्मेदारियों का बोझ था न वक्त की कोई जल्दी थी, बचपन की वो गलियां सचमुच जिंदगी की सबसे खूबसूरत कड़ी थी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस दौर की जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, हमारा और आपका प्यारा और बेहद ही खूबसूरत यादगार बचपन। बचपन का नाम आते ही सबसे पहले याद आते हैं वो बेफिक्र दिन, न पढ़ाई की ज़्यादा चिंता न भविष्य का फिक्र। स्कूल की घंटी बजते ही दोस्तों के साथ मैदान की ओर दौड़ पड़ना, गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना और छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, यही तो बचपन की असली पहचान थी। उस समय खिलौने छोटे थे लेकिन खुशियां बहुत बड़ी थी। इन्हीं खुशियों को याद करते हुए आइए सुनते हैं शान और आमिर खान की आवाज़ों में फिल्म तारे ज़मीन पर का खूबसूरत सा गीत। गीत दिया है परसुन जोशी ने, संगीत से सजाया है शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लॉय मेंडोसा ने, और इस गीत की फरमाइश की है प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा ने।

दोस्तों, आज जब मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा घेर लिया है, तब बचपन के वो खेल और भी ज़्यादा याद आते हैं। छुपन छुपाई, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा और शाम होते ही दोस्तों की टोली, इन खेलों में जो आनंद था वह शायद किसी वीडियो गेम में नहीं मिल सकता। उन पलों में हमें दोस्ती, टीम वर्क और हार जीत को स्वीकार करना सिखाया है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं पलों के साथ फिल्म स्वदेश से उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज़ों में सुंदर सा गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं AR रहमान।

और इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे ने।

दोस्तों, बचपन सिर्फ खेलों का नहीं बल्कि परिवार के प्यार और संस्कारों का भी दौर था। दादी नानी की कहानियाँ, माँ के हाथ का खाना और पापा की डांट में छिपा प्यार, ये सब हमारी ज़िंदगी की ऐसी यादें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। आज भले ही हम बड़े हो गए हों, लेकिन उन रिश्ते की गर्माहट हमेशा दिल में बसी रहती है। इन यादों को ताज़ा करते हैं, साथ में सुनते हैं उदित नारायण और ज्योत्सना हरदिकर की गाई फिल्म लाडला से ये प्यारा सा गीत। संगीत दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव ने, गीत दिया है समीर ने, साथ ही इस गीत के फरमा

मैच करता है। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े।

दोस्तों, यह गीत सुनकर आपको अपने बचपन की याद आ ही गई होगी। बचपन वापस तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। जब भी जिंदगी की भाग दौड़ थका देती है, तब बचपन की वही मीठी यादें हमें मुस्कुराने की वजह देती हैं। इसलिए अपने अंदर के उस बच्चे को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि वही मासूमियत और खुशियाँ जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। बचपन को याद कीजिए और सुनिए फिल्म कल हो ना हो का गीत सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लॉय मेंडोसा।

दोस्तों, बचपन की यादें किसी खजाने से कम नहीं होती। जितना उन्हें याद करो उतनी ही मुस्कान दे जाती है। इसी के साथ आज का क्रम युवा पसंद बस यहीं तक।

दोस्तों मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने सपनों को सजाते रहिए। फिर होगी मुलाकात युववाणी के इसी मंच पर, तब तक अपनी दोस्त चंचला यादव को दीजिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली

में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में सुनिए बिलासपुर जिले की चिट्ठी।
1: श्रोताओं नमस्कार।

नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बिलासपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 31 मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के मल्हार में ज्ञान भारतम अभियान के तहत प्राप्त दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मल्हार में 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पट्टिकाएं पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शिलालेख

0: मल्हार में तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पट्टिकाएं पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शिलालेख छठी सातवीं सदी के हैं और प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जा रही ये ताम्र पट्टिकाएं तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते 4 जून को बिलासपुर में मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों, राजस्व प्रकरणों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए और प्रशासन को जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने, पेयजल व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और किसानों को समय पर खाद तथा बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। इसी दिन मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642,27,00,000 रूपये से अधिक की राशि अंतरित की। अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मधुबन जूना क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर और एजुकेशन हब का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, खेत बचाओ अभियान के तहत तकतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत खजूरी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, उर्वरक का संतुलित उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त संचालक आर के राठौर ने किसानों को नील हरित काई के उत्पादन और उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें प्राकृतिक खेती के विभिन्न मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य सलाहकार मोनिका सिंह ने पिछले दिनों तखतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत निगारबंद, राजाकापा, बहुरता और हरदी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छाग्राहियों द्वारा किए जा रहे श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे स्वच्छाग्राही समूह के सदस्यों से भी बातचीत की। उन्होंने ग्राम सरपंचों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को समझाइश दी जाए। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा शनिवार 6 जून से आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 9 जून तक हर दिन दो पालियों में हो रही है। 6 जून को भाषा और निबंध तथा 7 जून को सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। वहीं कल 8 जून को सामान्य अध्ययन तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र तथा 9 जून को सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में हो रही है। श्रोताओं, राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में रिक्त सीटों के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिलासपुर के कोने स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कोपा, विद्युतकार, फिटर, शीट मेटल वर्कर, स्टेनो, हिंदी अंग्रेजी, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सहित 32 व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बिल्हा स्थित ITI में व्यवसाय, कोपा, स्टेनोग्राफी, हिंदी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और वेल्डर जैसे व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरीमा शर्मा की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति हा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले करीन गोठ बात।

0: बात। घरेलू रसोई गैस के कीमत मां 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। उन्हें केंद्र सरकार हा कहे है कि भारतीय सिलेंडर के कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना मां अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के दू दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू। राज्यपाल रमेन डेका हा ए सम्मेलन के करीन उद्घाटन। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति हा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा राजधानी के राज अतिथि गृह पहुना मा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले भेंट करीन। ए दौरान साध्वी निरंजन ज्योति हा प्रतिनिधि मंडल ले बताए गए समस्या के संगे उखर मांग और सलाह बारे मा जरूरी कदम उठाए के भरोसा देवाइन। ए मौका मा राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद, उपाध्यक्ष चंद्रकांत वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर एस विश्वकर्मा और लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा समेत पिछड़ा वर्ग मा अवैया कई ठिन समाज मन के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। अपन दौरा बेरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल रमेन डेका ले लोक भवन मा सौजन्य मुलाकात करीन। उन्हीं साध्वी निरंजन ज्योति हा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले घलो आज रायपुर स्थित उखर निवास कार्यालय मा भेंट करीन। ए दौरान इखरवन बीच पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शिक्षा मा विकास और सामाजिक आर्थिक विकास ले जुड़े कतकोन विषय मा गोट बात होइस। घरेलू रसोई गैस के कीमत मा 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। नवा रेट रतिहा 12 बजे ले लागू हो गए है। दिल्ली में आज ले घरेलू रसोई गैस के कीमत 913 रुपया ले बाढ़ के 942 रुपया हो जही। इही बीच केंद्र सरकार हा कहे है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी के कीमत मा बहुत ज्यादा बाढ़े के बावजूद भारतीय घर मन मा रांधे पसाए वाले गैस हा विश्व स्तर मा सबले कम कीमत मा मिलत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हा एक ठिन बयान मा कहे है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना मा सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा असन विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कमती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए हा सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बेचे के दावा बारे में खंडन करी है। एनटीए हा कहे कि यह हर विद्यार्थी और उनके परिवार वाले मन के संसो के फायदा उठैया नकल गिरोह के काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा 23 जून के दुसरैया नागरिक अलंकरण समारोह में ए बछर के 65 झिन मनखे मन ला पद्म पुरस्कार दीही। एकर पहली पाछू महीना श्रीमती मुर्मू हा राष्ट्रपति भवन में होए पहलैया नागरिक अलंकरण समारोह में 66 झिन प्रतिष्ठित मनखे मन ला पद्म पुरस्कार दे रही। यहाँ बता दें कि ये पुरस्कार ला हर बछर गणतंत्र दिवस के मौका में घोषित करे जाते। केंद्र सरकार हा कानूनी माप सिस्टम के चलत खाद्य तेल पर मानक पैकिंग लागू करे है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हा कहे है कि संशोधित नियमन ले प्रमुख खाए के तेल मन पर मानक पैक आकार तय करेगी है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा रायपुर संभाग के समीक्षा बैठक में कहीन है कि किसान मन ला खाद और बीज मिले बारे में कोनो प्रकार के हलाकानी नहीं होना चाहिए। उमन निर्देश दे है कि छोटे और सीमांत किसान मन ला प्राथमिकता के आधार में खातू और बीजा दे जाए और एकर जवाबदेही संबंधित कलेक्टर के होही। मुख्यमंत्री हा नैनो उर्वरक के बउरई ल बढ़ावा दे बर और गैर कानूनी ढंग ले रेती खनई पर कड़ा कार्रवाई के निर्देश घलो दे है। छत्तीसगढ़ सरकार हा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान पढ़िया लेका मन बर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत एडमिशन के काम शुरू कर दी है। योजना के माध्यम ले चुने गए पढ़िया लेका मन ला प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालय मन में कक्षा 6वीं ले 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाही। आवेदन जमा करे की आखिरी तारीख 15 जून रखी गई है। एक हर बार चयन परीक्षा 5 जुलाई की हुई। ए बछर विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लैका मन पर पहली बेर 2% आरक्षण घलो रखे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमारे फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।

0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार डहार। देश भर के सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के दूदिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू हो गए है। राज्यपाल रमन डे कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन के उद्घाटन करीन। एमा बोला तो मन कहीन की चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के काम न केवल वित्तीय सलाह है भल्लू को मन कई ठिन व्यवसाय के सफलता में एक ठिन सुग्घर मार्गदर्शक के भूमिका घलो निभाते। ओमन यहू कहीन की आम लोगन के सहूलियत ला ध्यान में रखत टैक्स सिस्टम ला और ज्यादा सरल बनाया जाना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के कई ठिन जिला मन में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम रखे गए रही। एक चलत उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा जगदलपुर में रखे गए कार्यक्रम में शामिल हुई। ये मौका में श्री सावहा खुदे साइकिल चला के पर्यावरण संरक्षण और खुद के फिट रहे बर आरो दिन। ये कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश छिकारा घलो शामिल हुई। उहे कोंडागांव जिला में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकालेगी। ये कार्यक्रम में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना समेत अन्य अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्यार्थी खिलाड़ी और आम लोगन मन घलो शामिल हुई। इसी कड़ी में मुंगेली पुलिस डहर ने जिला मुख्यालय और लोरमी में साइकिल रैली रखे गई रही। उहे कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में साइकिल रैली निकालेगी जेमा कलेक्टर रोकतिमा यादव समेत जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होए के मौका में देशभर में कई ठिन कार्यक्रम हुआ थे। इसी कड़ी में मुंगेली स्थित जिला अस्पताल में साफ सफाई के अभियान चलाएगी। ये मौका में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन अस्पताल कैंपस के साफ सफाई करके स्वच्छता के आरो दिन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर ढाले काली 8 जून के विशेष कार्यक्रम प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश ढाले बनाए गए एक कार्यक्रम के प्रसारण बिहनिया 8:30 बजे ले 9 बजे तक होही। छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एक कार्यक्रम ला एक ही संग्रह प्रसारित करही। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे के चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरा पर करेंगे ही। एक संगे ओमन सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनिया छत्तीसगढ़ के पहले या क्रिकेटर बन गए हैं। आयुष पिछला रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ बस 60 मैच के 13 पारी में 57.3 के औसत ले 573 रन बनाए हमें जेमा 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन में माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग काम पर 9 जून ले 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम हुई। ए पाए के कई ठिन यात्री गाड़ी प्रभावित रही जेमा रायपुर डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ रायपुर समेत 8 ठिन डेमू और मेमू गाड़ी मन 10 और 11 जून के कैंसिल रही। अब थोरकुन समाचार सारमा। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ला संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के सदस्य नामित करेंगे है। राज्यपाल रमन डे कहा रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राजाभिषेक समारोह दिवस में उनकर मूर्ति के अनावरण करीन। ए मौका में उमन महाराष्ट्र मंडल ला एम्बुलेंस दे के घोषणा घलो करीन। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ए बछर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के विषय है समस्या ले समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधिमन ले करीन गोठ बात। घरेलू रसोई गैस के कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। उन्हें केंद्र सरकार हा कहे है कि भारतीय सिलेंडर के कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना में अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के दूदिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू। राज्यपाल रमन डे कहा इस सम्मेलन के करीन उद्घाटन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। आइए सांझ की गोधुली बेला का स्वागत करें कुछ लोकगीतों से। सुनते हैं कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं देवी भजन सरगुजिया लोक गायक श्रीलाल एवं साथियों की आवाज़ में।

कार्यक्रम गोधुली की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं जलसा भजन, सादरी लोक गायक अलीमा तिग्गा एवं साथियों की आवाज में।

0: सादरी लोक गायक अलीमा तिग्गा और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जलसा भजन। कार्यक्रम गोधुली बस यहीं तक मीडियम वेव और एफएम बैंड पर, ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, कानून की बात। आज इस कार्यक्रम में सुनिए संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है चंद्र ऋषि ठाकुर। प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की है।

0: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे संपत्ति विवाद से संबंधित सभी कानूनी मामलों के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री आशुतोष द्विवेदी जी को। आप जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, तो आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है द्विवेदी जी आकाशवाणी जगदलपुर के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आपसे हम पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये संपत्ति विवाद क्या होते हैं और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ किस प्रकार के विवाद ज़्यादातर देखने को मिलते हैं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, संपत्ति विवाद में चल अचल संपत्ति शामिल है। चल संपत्ति से मतलब यह है जिनको इधर से उधर किया जा सकता है, और अचल संपत्ति में अस्थायी संपत्ति जो जल जंगल जमीन ये सारी। तो अब चल और अचल संपत्ति के विवाद के विषय में जहाँ तक प्रश्न है, प्रमुखतः विवाद मालिकाना हक से होता है, वसीयती अधिकार के संबंध में होता है, वारिशों के संबंध में होता है। ये प्रमुख तीन प्रकार के विवाद होते हैं। संपत्ति के अधिकार को लेकर के लोगों के बीच में जहाँ असहमति बनती है वहाँ पर ये विवाद शुरू होते हैं। और चल और चल संपत्ति के संबंध में वारिशों के बात को, विरासत हक को लेकर के, मालिकाना हक को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के, उसकी सीमा को लेकर के जहाँ पर विवाद उत्पन्न होते हैं उसे संपत्ति विवाद कहा जाता है। भारत देश में जैसा कि आपने पूछा कि बहुतायत कौन से विवाद ज़्यादा आते हैं, हमारे देश में अज्ञानता है, अशिक्षा है। भारत देश के सारे प्रदेशों में भूमि से संबंधित कानून बने हुए हैं जो कि प्रादेशिक कानून होते हैं, और कुछ सेंट्रल लॉ हुआ करता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है। उसमें कई तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम बनाया गया है, उसमें इन सी चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि एक संपत्ति दूसरे के पास किस तरीके से जा सकती है। लोगों को इसका ज्ञान कम है, वो समझ नहीं पाते हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, परचेज करने के बाद पता चला कि म्यूटेशन की एक कार्रवाई होती है, जमीन पे अपना नाम दर्ज कराना। जो रेवेन्यू पेपर्स होते हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के कंसर्न में अगर बात करें तो किस्तबंदी खतौनी B1 होता है, खसरा होता है। जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है या जमीन को किसी अधिकार के तहत प्राप्त करता है तो उस बारे में राजस्व अधिकारी को सूचना दी जानी होती है। राजस्व अधिकारी का मतलब है तहसीलदार हो गया, इनको सूचना देनी होती है। गांव में पटवारी होता है, राजस्व निरीक्षक होता है, इन लोगों को सूचना देने की जरूरत पड़ती है। सूचना देते हैं तो बाकायदा उस सूचना को दर्ज किया जाता है, तहसीलदार के पास ले जाया जाता है कि पहले इस संपत्ति के ये मालिक थे। इस मोड से हमने बताया आपको, संपत्ति अंतरण अधिनियम दान के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से, गिरवी के माध्यम से, इन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है तो जो जिस व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है उसको आप B1 में दर्ज करो, उसके स्वामित्व में दर्ज करो, खसरा में दर्ज करो।
0: ज़्यादातर जब ऐसे ज़मीन के या फिर प्रॉपर्टी के मामले आते हैं तो पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति और स्वयं की संपत्ति की बात भी आती है। लोगों को जानकारी होती है कि पैतृक संपत्ति क्या है, पिता की संपत्ति क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं भी होती है। तो इन तीनों संपत्तियों में क्या अंतर है और इन मामलों को, जैसे अगर कोई संपत्ति का विवाद आ भी जाता है तो ऐसे मामलों को सुलझाने में वसीयत क्या भूमिका निभा सकती है?
1: देखिए, प्रॉपर्टी दो तीन प्रकार की होती है। एक तो पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति माने अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो तो पैतृक संपत्ति होती। दूसरी संपत्ति होती है सेल्फ एक्वायर्ड, स्वार्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति से आशय है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी को स्वतः परचेज किया या अपने मेहनत से, अपने पैसे से, अपने परिश्रम से उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मतलब है पिता, बेटा, बेटी, भाई, इन लोगों ने सामूहिक धन से अगर कोई उस प्रॉपर्टी को परचेज किया तो ये संयुक्त संपत्ति होती। पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि सारे वारिशों को

0: यानी तीन पीढ़ी मान लीजिए, अगर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो उसके बेटे को और उसके नाती को उसमें बराबर का अधिकार होता है। यहाँ तक है कि अगर बच्चा गर्भ में आ गया तो भी उसका अधिकार बन जाता है। इसमें महिलाओं को लेकर के पहले कानून थोड़ा संकीर्ण था। संकीर्ण से आशय यह था कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में बच्चियों को हक नहीं हुआ करता था। अभी 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया और उसमें बच्चियों को भी, महिलाओं को भी, पुत्रियों को भी बाई बर्थ यानी जन्म से ही उनका पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से अधिकार दे दिया गया है। अब आए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बनाता है। इसमें जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जब तक वो जीवित है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता।
1: तो उसमें वसीयत की बात आ जाती होगी।
0: हाँ, उसमें यह होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी उसके जीवन काल में उस प्रॉपर्टी दावा नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड स्वार्जित संपत्ति होती है उसका वो व्यक्ति किसी भी तरीके से उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, उसको बयानित कर सकता है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, गिरवी कर सकता है।
1: और वसीयत अगर वो बना दे तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके बच्चों को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयत के माध्यम से अपनी स्वार्जित प्रॉपर्टी को दे सकता है।
0: हाँ, मैंने बताया ना कि अपने मर्जी से उस प्रॉपर्टी को बयानित कर सकता है, उसको किसी को भी दे सकता है। और उसने अगर वसीयत कर दिया किसी तीसरे के पक्ष में तो जो उसके वारिस होते हैं वो दावा नहीं कर सकते
1: जी। और जब हम संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं, कोई संपत्ति हम अक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए?
0: संपत्ति खरीदते समय सबसे पहले तो जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का संपत्ति में मालिकाना हक आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है, किसी दूसरे का यानी संपत्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, उसकी तस्दीक सबसे पहले कर लेना चाहिए। अभी तो काफ़ी सुधार हो गया है लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जो व्यक्ति ज़मीन को बेच रहा है उसकी फ़ोटो भी नहीं लगती थी, उसका आधार कार्ड की कोई परिकल्पना नहीं थी, कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं लगते थे, नक्शे नहीं लगते थे, यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री की जा रही है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते थे, बहुत सारी इररेगुलरिटी हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें, कौन व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है, जो व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा एक चीज़ बताया कि उसके पूर्वजों की संपत्ति तो नहीं है, यदि उसके पूर्वजों की संपत्ति है तो उसकी जाँच करें और उनके कौन कौन वारिस हैं उसकी भी जाँच कर लें, पुराने रिकॉर्ड की भी जाँच कर लें
1: जी।
0: कैसे, एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा, जैसे जमीन, जनजाति समुदाय के व्यक्तियों की जमीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समुदाय का ना हो नहीं खरीद सकता। दूसरी चीज़ें हैं जो हमको खरीदी में ध्यान देना चाहिए, कुछ अलाटेड ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें गवर्नमेंट ने आवंटित कर दी है, पट्टे पर दी है, लीज पर दी है, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दी है तो विदाउट परमिशन आप गवर्नमेंट आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो हमको ये भी देखना है कि कहीं आवंटित ज़मीन तो नहीं है, अगर आवंटित ज़मीन है तो इस ज़मीन के लिए कलेक्टर से परमिशन ली गई है सेल आउट करने के लिए कि नहीं ली गई है। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को बारीकी से जांच करने के बाद जो है प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में विवाद नहीं होगा, मुकदमेबाजी में नहीं फंसोगे
1: जी। आपने तो बहुत सारी जानकारियां दे दी हमारे श्रोताओं को संपत्ति विवाद से संबंधित, लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हो तो ज़रूर कहें।
0: देखिए, अभी जो स्थितियाँ बनी हैं हमारे देश में, ज़मीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं और बढ़ने के पीछे कारण यह है जिन व्यक्तियों को ज़मीनों की ज़रूरत है उनके वश के बाहर हो रही है। उसका कारण ये है, ज़मीनों का जो खरीद फरोख्त हो रहा है, जो मीडिएटर लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, वो ज़मीनें उनके पास जा रही है। ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहला तो ये करना चाहिए कि ज़मीनों के संबंध में जाँच पूरी तरीके से करिए, ज़मीनों की जाँच कर

0: के बाद उसमें आप आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, अभी नालसा, सालसा और डालसा। नालसा का मतलब यह है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। स्टेट स्तर पे भी विधिक सेवाएं चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी विधिक सेवा दी जा रही है। इसमें क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारियां दी जाती है और गांव-गांव में कैंप लगाए जाते हैं और जिला विधिक सहायता की ओर से एक वकीलों का पैनल है जो बिना कोई शुल्क के आपको हमेशा जानकारी देने के लिए तैयार है। तो संपत्ति के मामले में यदि आपको कोई जानकारी लेना है, परचेजिंग करना है या कहीं कोई आपको समस्या आ रही तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है और तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई है। विधिक सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में बताऊँ आपको, लोक अदालतों का आयोजन। लोक अदालत का मतलब यह है कि आपसी झगड़े को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाना। लोक अदालत में क्या होता है, किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती,
1: आपसी समझौता हो जाता है।
0: अदालत में फैसला होगा, एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा। उसमें क्या है, वो जो सामाजिक सद्भाव है वो जो है नहीं दोबारा वापस आएगा। लोक अदालत के माध्यम से आप निपटारा करो, आपके केस का जल्दी निपटारा हो जाएगा, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी।
1: आगामी लोक अदालत कब है?
0: आगामी लोक अदालत अभी 12 सितंबर महीने में लगभग नेशनल लोक अदालत तीन होती हैं, कम से कम तीन से चार, तो 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत है। और इसके बारे में खूब सारा प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे आपराधिक मामले हों, चाहे राजस्व के मामले हों, चाहे संपत्ति के मामले हों, सारे मामले एक ही छत के नीचे देन एंड देयर तुरंत जो है निपटाया जा सकता है। नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को ज़रूरत है तो 15100, इस नंबर पे फ़ोन करके वो पूरी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्टेट लेवल की जो विधिक सेवा है उसके भी नंबर्स हैं, हर जगह आज ऑनलाइन मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे नंबर है, यहाँ पर एक एडवोकेट की हमेशा नियुक्ति रहती है, उनका अलग से विभाग है, उनका अलग से चैम्बर है, उनसे जाकर के कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। विधिक सहायता उन मामलों में भी मिलती है अगर आप पैसे नहीं लगा सकते हैं, कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में भी हमारा विधिक सहायता मिलता है। तो कानून के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे जो अदालतें हैं इनके द्वारा जो सुविधाएं लीगल एड की दी जा रही हैं, जिला विधिक सहायता के माध्यम से, राज्य विधिक सहायता के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर पे विधिक सहायता के अथॉरिटी के माध्यम से जो सुविधाएं दी जा रही है उसको लेना चाहिए हर व्यक्ति को, और लोग ले भी रहे हैं।
1: जी आशुतोष द्विवेदी जी, आपने संपत्ति से संबंधित विवाद के मामलों में जितनी भी सारी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी है, हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें ज़रूर लाभ पहुँचेगा। आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।

0: कानून की बात आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे। संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंट करता थी चंद्र ऋषि ठाकुर। प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ,

0: को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटर भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
6: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभास कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल रमन डेका ने किया उद्घाटन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से जब्त किया करीब 63 लाख रुपए का गांजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर में पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने इन प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं के अलावा उनकी मांगों और सुझावों पर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल रमन डेका से लोकभवन में सौजन्य मुलाकात की। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शैक्षणिक उन्नयन तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। नई दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ती है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या को कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य केवल वित्तीय सलाह तक सीमित नहीं है।

0: बल्कि वे विभिन्न व्यवसायों की सफलता में एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। इस सम्मेलन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे 1000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने स्वयं साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण और फिट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश छिकारा भी शामिल हुए। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली स्थित जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने बस्तर क्षेत्र में 3 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं प्रदेश कार्य समिति में भी एक नए सदस्य को शामिल किया गया है। पार्टी ने दिनेश कश्यप को बीजापुर और रूप सिंह मंडावी को कोंटा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। वहीं श्रीनिवास राव मद्दी को बस्तर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी और श्रीनिवास मिश्रा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा माया झाड़ी को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में शामिल किया गया है। वहीं पार्टी ने उर्मिला तोकल को बीजापुर जिला भाजपा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। महासमुंद जिले के रेहटीखोल नाके पर पुलिस ने तलाशी के दौरान करीब 125 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 63 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहे एक वाहन को तलाशी के लिए रोका। इसमें कटहल की सब्जियों की बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा रखा गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोड़मा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक बरामद किए हैं। इसके अलावा माओवादियों की वर्दी और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। अभियान के बाद सुरक्षा बल के जवान सुरक्षित रूप से अपने शिविर स्थल लौट गए हैं। दुर्ग जिले के रौंदा स्थित सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी पाए जाने पर समिति प्रभारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जांच में 560 क्विंटल धान कम पाया गया। वहीं करीब 2100 वारदाने भी कम थे। शिकायत मिलने पर दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक ने समिति प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर इंडिया ए टीम के लिए जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी मौसम में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों के 13 पारियों में 57.3 की औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं।

0: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले गाड़ियों की परिचालन स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। इस बीच बिलासपुर से बेंगलुरु तक एक समर स्पेशल ट्रेन शुरू किया गया है। ये ट्रेन बिलासपुर से 12 जून को चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ सहित कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के कुछ भाग में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 12 जून से वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने के आसार जताए हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि घोषित की है। सीबीएसई ने बताया है कि छात्र आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बचे हुए किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के लिए कल पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। सक्ती जिले के लक्ष्मण भाटा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और कोरबा जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की विशेष उड़न दस्ता टीम ने 15 स्थानों पर छापा मारकर 14 गाड़ियां और मशीनें जब्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्यपाल रमन डेका ने किया उद्घाटन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनके पास से जब्त किया करीब 63 लाख रुपए का गांजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको कल यानी सोमवार के हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों से रूबरू करा दें।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम में गायन स्वर होगा पंडित जसराज का और राग प्रयोग होगा मारव। हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 पर, और कार्यक्रम का शेष भाग का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:00। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20।

पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल और गोधुली आप सुन सकेंगे प्रातः 7 और शाम 6:20 पर। हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर गोसाइन का प्रसारण समय होगा 2:10 पर। खेती की बात एवं खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे 6:45 एवं 1:05 पर। शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे 12:30 पर और 12:00 आप सुन सकेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण समय होगा 11:05 पर। आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम फोन इन आप सुन सकेंगे दिन के 10:00। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का प्रसारण समय होगा 9:30 पर।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर का प्रसारण आप सुन सकेंगे प्रातः 8:30 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का प्रसारण समय होगा प्रातः 7:30 पर।

तो ये थे कल यानी सोमवार को हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। और आज के शेष कार्यक्रमों में आपके लिए खास है कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, सुन सकेंगे आप रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:15 पर। हमारे किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। और अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। कार्यक्रम रजनीगंधा बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

जम्बो किसान भाई वाला बिरजू भैया के राम राम। किसान भाइयों, तनिक पानी हर तो संकेत देहत है कि भाई मानसून भाए आही और वो हिसाब से जो है हम अपन तैयारी में जुटे हैं। तैयारी भी जरूरी है, काहे कि भाई समय से पहले तैयारी करे से थोड़ा आसानी हो जाते है। कावर की जब बिल्कुल मानसून आ जाते तो घड़ी दौड़ा दौड़ी है तनिक परेशानी में डाल देते। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो खाद बीज है उकर जो है पहले से व्यवस्था कर लिया जाए और वो हिसाब से जो है अपन खेती कर तैयारी करल जाए, उकर बारे में सोचल जाए। किसान भाई जी से वैज्ञानिक मन भी कहता है कि भाई ये इधर तनिक मानसून कमज़ोर रही तो वो हिसाब से हमन ला सोचना है कि भाई कौन किस्म के हमन धान लगाई जो कम अवधि में तैयार हो जाए, कम पानी में तैयार हो जाए। तो ये हिसाब से भी हमन ला तनिक सोचना पड़ी। और देखिए भाई, किसान तो हमेशा यही तैयारी में रहते कि भाई कब बारिश होए और कब हमन जो है खरीफ कर खेती में जुड़ी। किसान भाई, खरीफ कर खेती में हमन तो भाई जुड़बे करब, कहें कि हमार कामे चाहे, लेकिन एक साथ साथ ये जो मौसम आए मानसून कर पेड़ पौधा लगाए कर भी बढ़िया समय रहते। और

हमन गोठियात भी रहथन राउर मन से कि भाई हमर जो पर्यावरण है ओके बचाए बर ओके बढ़िया रखे बर जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाई और ये जो बरसात का समय है पेड़ लगाए बर सबले बढ़िया है। तो किसान भाई हमन देखत हन भी कि हमारे जो पर्यावरण हर बिगड़ता है वो हिसाब से देखत हन कि मौसम भी बिगड़ता है इते तीते जो मौसम भागता है बरसात भी समय पर नहीं होता है। तो ये जो पर्यावरण का असंतुलन है एक देख के भी हमला तनिक सोचना पड़ी कि भाई हमारे जो पर्यावरण है उसके सुधारे पर तनिक प्रयास करी चाहे व्यक्तिगत प्रयास करी चाहे सामूहिक प्रयास करी सब बर जरूरी है पेड़ पौधा काबर कि पेड़ पौधा से ही हमार जिंदगी कर कहली आधार जुड़ी सा है। अब आधार कहत हूँ तो एक मतलब आए कि भाई पेड़ पौधा से हमला सांस ले भर हवा भेटा थे बढ़ियन पानी भेटा थे और बढ़ियन हमार जो है वातावरण रहते। तो बड़ा जरूरी है कि हमन पेड़ पौधा के बारे में सोची। और एक बात और आए भाई एक पीछे कि हमन जो जंगल है यदि हमन अपन आसपास अपन बाड़ी में अपन खेत में कुछ ऐसा पेड़ लगाथन बांस लगाथन जेकर से हमर जो आवश्यकता है उकर पूर्ति हो जाता है तो जंगल पर भी दबाव कम पड़ी। तो किसान भाई अभी बढ़िया मौसम है जो किसान भाई फलदार पौधा लगाना चाहते हैं उमन खातिर भी बढ़िया ना है कि भाई पर्यावरण के सुरक्षा के साथ साथ फलदार पौधा भी बेटा ही और उनके बेचे से आय भी हुई तो ये बढ़िया काम है। चाहे जो किसान भाई बांस लगाना चाहते हैं इमारती लकड़ी लगाना चाहते हैं उनके बारे में सोच सकते हैं जो तनिक बंजर जमीन है वहाँ पे ऐसा पेड़ लगा सकता है जिकर से भाई अजय तो लाभ नहीं बिठाए लेकिन भाई 8-10 साल बाद बढ़िया लाभ बिठाते। तो प्लांटेशन या पौधरोपण के बारे में भी सोच सकते हैं बगीचा के बारे में भी सोच सकते हैं। आजकल किसान भाई जो है परंपरागत खेती के अलावा दूसरे व्यवसाय से भी जुड़ता है जैसे कि भाई फलदार जो वृक्ष लगाता है चाहे वो नींबू कर बात है अमरूद कर बात है आमा कर बात है लीची कर बात है तो कर बागान लगा के भी बढ़िया फायदा उठाते हैं। तो किसान भाई एक तो पेड़ लगाए से हम उनके पर्यावरण के बात होवेज करी दूसरी बात कि हमार जो मिट्टी है वह सुधरी हमार जो कहली आय है इनकम है वह सुधरी। तो बड़ा बढ़िया समय है कि किसान भाई जो है कर तैयारी अभी से कर लें। और किसान भाई यदि फलदार पौधा लगाना चाहते हैं तो भाई जो उद्यान विभाग है वहाँ से संपर्क कर लें या फिर दूसरे तरह के नीम हो गई या सु बबूल हो गई तो ये तरह के जो पेड़ लगाना चाहते हैं तो वन विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा पेड़ लगाए पर बड़ा ज़रूरी कि हमने पहले से तैयारी भी कर ली जहाँ उनके पेड़ लगाना है भाई वहाँ पर नाप जोक कर ली कितना दूरी में कितक पेड़ लगाना है ओहू के बारे में कौन किस्म के पेड़ लगाना है एहू के बारे में जो है पहले से हम योजना बना सकते हैं तो एक से बढ़िया रही। तो किसान भाई अभी जो है पेड़ पौधा लगाकर बढ़िया समय है। और जब हम व्यक्तिगत तो प्रयास करबे करथन यदि हम सामूहिक सामुदायिक प्रयास की बात करी तो हमारे जो स्कूल है हमारे जो ग्राम पंचायत है या फिर जो हमारे सामुदायिक तालाब है उकर किनारे किनारे यदि हम पेड़ लगाथन तो भाई देखी यदि फलदार पेड़ लगाथन तो उकर से फायदा फल तो भेटाबे करी भाई जो हमारे स्वास्थ्य पर बढ़िया ना है। दूसर बात ये होती कि यदि हम तालाब के किनारे या जो अपन डबरी है ओकर किनारे पेड़ पौधा लगा देथन तो गर्मी में देखी पानी कर जो वाष्पन होते पानी जो भाप बनकर उड़ते वह कम उड़ी साथ में हमला फल भी भेटाही तो ये तरह के पर्यावरण भी हमारे सुरक्षित रही तो कई ठन लाभ हो जाही। तो हमन योजना बना सकते हैं अपन ग्राम सभा में भी बात कर सकते हैं कि भाई ये साल कहाँ कहाँ वृक्षारोपण करना है और जो पिछले साल कर जो वृक्षारोपण रही सुमन के काय स्थिति है तो ये तरह के जो है कार्य योजना बना के ओके हमन लागू कर सकत हन और अपन गाँव ला बढ़िया हरा भरा कर सकत हन। और किसान भाई हमन जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पानी भी बढ़िया रहते जो जल स्तर है जमीन में वो बने रहते बारिश भी बढ़िया होते तो पेड़ जो है बहुत जरूरी है जीवन भर। तो पेड़ के बात के साथ साथ ये भी बात जरूरी है कि हमारे पास जो आसपास जंगल है ओके भी बचाना जरूरी है कहें कि भाई जंगल से हमला कह ली कि कई तरह के अप्रत्यक्ष लाभ भी होते और कई तरह के प्रत्यक्ष लाभ भी होते। तो भाई पर्यावरण कर बात तो मैं करते चाहूँ लेकिन बात है कि भाई मान ली कि भाई ओकर से महुआ हो गई ओकर से कह ली कि और तरह के जो जड़ी बूटी हो गई चिरौंजी हो गई तो कई तरह के जो है देखिए अभी जो हमन तेंदू पत्ता तोड़त रहें भाई ओकर से हमन ला लाभ भेटा थे तो जंगल देखिए हमन ला आए तो देबे करते साथ में हमन ला जीवन भी देते तो जंगल के सुरक्षा के बारे में भी सोचना बड़ा

जरूरिया है। हमारे पास जो जंगल है ओके हमन कैसे बढ़िया बढ़ा सकत हन, बढ़िया कर सकत हन, ओके कैसे संरक्षित कर सकत हन, ओकर संवर्धन कैसे कर सकत हन, कैसे कार्य योजना बना सकत हन कि भाई कौन कति कर जंगल ला नहीं छूना है, कौन कति के जंगल में जो है लकड़ी झूरी लेना है, तो ये तरह के जो है हमन नियम बना सकत हन जो गांव में वन प्रबंधन समिति है या जो वन सुरक्षा समिति है होकर से हमन गोट बात करके ये जो है योजना बना सकत हन कि भाई कौन तरीका से जो है हमन आसपास के अपन जंगल ला सुरक्षित रख सकत हन। तो किसान भाई देखिए जब हमन पर्यावरण की बात करथन तो भाई एक बात मोर दिमाग में आते है कि भाई देखिए हमन विकास तो सबो जन चाहथन, लेकिन विकास कर मतलब ये नहीं है कि भाई हमन अपन जीवन ला नुकसान पहुँचाई, अपन जो आए वाला पीढ़ी है उमन ला नुकसान पहुँचाई, तो हमला जैसन बढ़िया पानी और हवा जंगल भेटाई उसने हमार भी जिम्मेदारी है कि हमार जो आए वाला पीढ़ी है उमन के भी बढ़िया जो सुविधा है ओहर भेटाए। तो बड़ा जरूरी है कि हमन अभी से सोची कावर कि जब जंगल नहीं रही तब ओकर कीमत पता चलते। हमन तो भाई रेडियो में सुनत रहथन, अखबार में पढ़त रहथन कि भाई ये क्षेत्र में जंगल नहीं है तो वहाँ की क्या स्थिति है, तापमान गर्मी में देख सकथन कि कितना बाढ़ जाता है। तो हमर कति जो जंगल है तो भाई ओकर से तापमान तनिक संतुलित रहते, तो ये बात ला भी समझना है कि और वही हिसाब से जो है अपन जो जंगल है ओकर सुरक्षा करना है। तो ये तरह से जो है हमन अपन प्रयास करके चाहे व्यक्तिगत प्रयास हो या सामुदायिक प्रयास हो एकर से हमन जो है अपन पर्यावरण ला बचा पाबो, अपन जीवन ला बचा पाबो। किसान भाई पर्यावरण के तो बात होते रहते, लेकिन एक बात और है कि देखिए जब हमन बात करते हैं पर्यावरण कर तो पर्यावरण में देखिए स्वच्छता भी आ जाते, और जब हमन स्वच्छता की बात करते हैं तो देखिए अपन व्यक्तिगत स्वच्छता भी आ जाते, अपन आसपास कर भी स्वच्छता आ जाते, और देखिए जहाँ स्वच्छता रहते वहाँ बीमारी बिल्कुल नहीं रहे। और देखिए जब स्वच्छता की बात करथन व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करी तो भाई देखिए नहाना जरूरी है वो तो भाई हमन करबे करथन, शौच के बाद देखिए हाथ धोना जरूरी है, खाए से पहले हाथ धोना जरूरी है तो हमन करबे करथन, और स्कूल घलों में जो है हमारे गुरु जी मन सिखाते हैं लड़का मन ला और हमूमन होकर पालन करथन। तो स्वच्छता तो बड़ा जरूरी है, जहाँ हमार हैंडपम्प है या फिर मान ले कि हमारे गली है तो वहाँ भी आसपास साफ सफाई रखना जरूरी है। कवर की भी जहाँ गंदगी होते देखी तो वहाँ तो देखी एक तो बात बैठे कर मन नहीं करे, और जहाँ गंदगी रहते वहाँ कामों करे कर मन नहीं करे, तो बड़ा जरूरी है कि हमने आसपास सफाई रखी। और आजकल तो बड़ा बढ़िया ना है कि भाई जितना कचरा हुआ था हमारे खेत में हमारे घर में वो सब के हमन बढ़िया खातू बना सकत हन। अगर खातू बनाए पर देखिए भाई गड़ा खोद के उतने में जितना सब्जी का छिलका है कचरा है वो डाल सकत हन और बढ़िया खातु बन जाते, तो एक तो वो बात हो जाते, दूसरा स्वच्छता साफ सफाई कर बात हो जाते जिगर से बीमारी कम फैलते। तो स्वच्छता जीवन पर बड़ा जरूरी है, चाहे वो घर कर बात हो, चाहे वो ग्राम पंचायत कर बात हो, चाहे वो कोई भी सामुदायिक जगह कर बात हो, तो भाई देखिए तनी साफ सफाई सबला बढ़िया लगते और दिसते भी बढ़िया, तो बड़ा जरूरी है कि हमन आस पास साफ सफाई रखी। और यही बात ला देख के लड़का मन भी सीखते हैं कि भाई हमारे जो अगुआ हैं उमन कैसे रहता है, साफ सफाई से रहते हैं तो उमन ये बात ला सीखते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि हमन आसपास साफ सफाई रखें, और जहाँ पे हमारे जल स्रोत है वहाँ तो साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो जल हमन पीथन वहाँ आसपास यदि साफ सफाई नहीं रहते तो मान ले कि भाई हैंडपम्प कर बात हमन करें कि वहाँ देखिए बहुत कचरा है बहुत कीचड़ा है, तो कीचड़ के वजह से कई तरह के बीमारी फैलाए वाला कीटाणु हमारे बर्तन से चिपक जाते हैं, फिर वो हमारे घरे चले जाते हैं, फिर जो है हमन ओला पानी ला पीथन तो ओकर से कई तरह के बीमारी भी आते हैं। तो चाहे वो सामुदायिक जगह कर बात हो चाहे व्यक्तिगत घर कर स्वच्छता कर बात हो, साफ सुथरा रखना घर ला भी और बाहर ला भी बड़ा जरूरी है। तो किशन भाई हो गुड बात तो और करबो, लेकिन मैं खतरे कुछ गीत सुन लेते हैं, तो आइए गुट गीत सुनते हैं जो लगाते हैं राकेश तिवारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भैया जी ये संदेश मल्ला सुनत रहें और ओकर से पहले सुनें लोकगीत जे लगात रहें राकेश तिवारी। किसान भाई पानी तो जिंदगी के आधार ही है लेकिन पानी के साथ साथ खाना भी जरूरी है। मैं अब खाना के बाद एकर से कहता हूँ कि आज आए खाद्य सुरक्षा दिवस और हर साल यही दिन जो है हमन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाथन और एकर उद्देश्य यही है कि भाई जो दूषित भोजन है और पानी से जो होए वाला बीमारी है ओकर बारे में सबो जन में जागरूकता बढ़े और ये दिन ये भी सुनिश्चित करे करा है कि हर व्यक्ति के सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। तो किसान भाई देखिए सरकार भी प्रयास करता है जो हमारे उपभोक्ता हैं उत्पादक हैं सरकार जो है खाद्य सुरक्षा के मतलब हमन समझथन और प्रयास करथन कि हमर जो नागरिक है देश कर भूखा जीन रहे और कहे कर मतलब है कि उत्पादन से लेकर उपभोग तक यानी खेत से थाली तक जो है भोजन पहुँचे और सुरक्षित भोजन पहुँचे। और ये जो दिवस हमन मनाथन भाई 2018 से मनाथन और एक यही उद्देश्य है कि सब भोजन ला बढ़ियन भोजन सुरक्षित भोजन और पौष्टिक भोजन भेटाए। किसान भाई हम देखते हैं कि हर साल जो है खराब और असुरक्षित भोजन से कई जन कर देखी लाखों जो मन से हैं बीमार हो जाते हैं। कभी कभी जो है देखी बढ़ियन पानी नहीं मिले तो ओकर से भी बीमार हो जाते हैं। तो बीमार हो से देखी हमारे जो विकास है और बाधित हो जाते तो बड़ा जरूरी है कि भाई एकर बारे में जो है हम एक दूसर के जागरूक करी कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हर थाली तक पहुँचे ये सब कर प्रयास रहे। और जब हम सुरक्षित भोजन के बात करते हैं तो देखिए हमें साफ सफाई के भी बात आते हैं कि भाई हम साफ सफाई से खाना पकाई साफ सफाई से हमन खाना खाई बासी भोजन से बची अच्छे तरह से हाथ धो के खाना खाई ताकि जो है हमन बीमारी से बचे रही। और जो देखी कई तरह के जो बीमारी हमन खुला कभी कभी भोजन छोड़ देते हैं ओकर से भी मक्खी से कई तरह की बीमारी फैलते। तो कहे कर मतलब है कि भाई जो भोजन है ओके भी सुरक्षित रखना है और जो उत्पादन है जो हमारे किसान भाई कराता है वो भी सुरक्षित उत्पादन करना है। तो ये दिन करे ही मकसद है यही उद्देश्य है कि सब जनला भाई बढ़ियन खाना और बढ़ियन पानी भेटाए। किसान भाई देखिए आज जो हमारे कार्यक्रम है हमन किसान ओकर में हमन किसान भाई मन से गोट बात करथन कि भाई कौन कस खेती कराता है का चीज कर खेती कराता है कैसे उन्नत खेती से आगू बढ़ाता है। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे किसान हैं अकल साय जी जो कि कुंदी खुर्द राजपुर कर रहा है।

0: भैया हैं, तो इनकर से मोरगोट बात हुई से कि भाई खीरा की खेती के साथ साथ और जो खेती है वोला कैसे करता है, कैसे आगू बढ़ाता है, का सोच रखता है। तो इनकर से गोट बात हुई से आइए गोट बातला सुनल जाए।
1: किसान भाई, आज मोर साथ है गोट प्रगतिशील किसान, उनकर से गोट बात करके जाना थी कि भाई कौन कस खेती करत है, कैसे आगू बढ़त है। तो सबसे पहले अपन नाम बताई।
2: जी, मोर नाम है अकल साय सांडिल, गांव कुंदी खुर्द, थाना तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर का रहने वाला।
1: तो अकल साय जी, अभी खेत में का लगी से?
2: जी, अभी तो नवा ये बरसाती सीजन कर तैयारी हुआ थे, पिछला जो गर्मी सीजन कर खेती रिस खत्म हो गई है। तो अभी
1: अच्छा,
2: जो है ना, हमन मन सब्जी भाजी वर्गीय फसल कर तैयारी कर थी, जेमा कुछ सेमी लगी, मूली लगी, खीरा लगी, और उसके साथ जो है ना टमाटर बनकर तैयारी करा था। और बाकी
1: अच्छा,
2: लगले अभी धान फसल कर भी समय आ गई सब, तो ओकरो थरहा उरहा कर तैयारी चलत
1: चलत
2: है।
1: है मैंने खाद बीज कर मैंने जुगाड़ चलत है।
2: जी, खाद बीज का जुगाड़ चलत है। बाकी तो
1: बढ़िया। तो अभी गर्मी में क्या फसल ले हैं?
2: गर्मी में खीरा कर फसल ले रहे हम।
1: अच्छा, तो खीरा खत्माई किसकी चलते आ है?
2: हाँ, अभी आखिरी स्टेज पे है खीरा। तो
1: अच्छा, कै तोड़ान तोड़थन?
2: खीरा मोर तो
1: अच्छा,
2: ये जो है ना लगभग 17-18 तोड़ा इसे ऊपरी
1: चल
2: बीस
1: गए।
2: है।
1: नहीं कुछ लाभ भेटा इसकी?
2: हाँ, लाभ भेटा है सर।
1: तो कितना में लगा रहे हैं खीरा?
2: करीबन 10 डिसमिल से कम है मेरे।
1: 10 डिसमिल में। तो चलिए भाई, किसान कर तो काम है कि सब्जी या जो भी नकदी फसल है उसे
2: हाँ
1: लगा के कैसे भी अपन खर्चा चलाना है।
2: जी,
1: तो अभी जैसे अब धान कर तैयारी चलाता है, तो अभी का धान लगा थन?
2: धान में मुख्य रूप से अब तो सबो जाना थवे कि जो है ना लोकल जो किस्म रही सो मन मन अब लुप्त है गई से, तो समस्त जो है ना खेत मन में हाइब्रिड कर ही चयन करके लगावल जाते।
1: हाइब्रिड सभी किसान लगाते हैं।
2: जी, लेकिन हमला हाइब्रिड कर साथ साथ जो है ना लोकल प्रजाति के भी बचाए के रखना है। जोन किसान मन अभी रखीन है, उमन मन से संपर्क जारी है कि भाई जोन जोन बीज ला रखीन है, हमन मन ला उपलब्ध कराएं। बाकी जो किसान मन अभी जेमन भीड़ उपलब्ध है, हमार प्रयास रही कि उमन से कलेक्ट करके ओकर प्रजाति के बचाए रखी, कुछ हिस्सा में ओके जरूर लगा करके अपन विचार चलत है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहें कि भाई देसी चीज है, एक बार
2: देसी
1: गुलाए
2: चीज, हाँ,
1: जाए तो नहीं मिले।
2: नहीं मिली।
1: भले भाई आधा एकड़ में लगाए चाहे एक एकड़ में।
2: हाँ,
1: अच्छा देखिए, मोर ख्याल से देसी में थोड़ा रोग राय भी कमे लगत रही।
2: जी, महोदय, मैं तो देखें कि जो है ना देसी कर जो स्वाद है मुख्य रूप से, वो आज कर जो हाइब्रिड किस्म कर जो भी धान मन हमन मन लगावा थी, खास करके खाए वाला जो अपन घरे रखे वाला जो धान हमन किस्म चयन कर थी, लेकिन उनमें वो स्वाद नहीं मिल पाए। भले उत्पादन में थोड़ा बहुत अंतर आए वो अलग चीज है, लेकिन मैं देखता कि जो में जो स्वाद है वो नहीं रहेगी इसे। और
1: ठीक
2: दूसरी
1: बोला
2: बात
1: तुम।
2: कि हमन मन के जो खेत है, हमार खेत कर जो मृदा शक्ति, उपजाऊ शक्ति, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो है ना खाद उर्वरक कर माध्यम से जो है ना ओवर भी नष्ट हो गई सब। और ओकर वजह से भी मुके जो अंदाज लगते कि जो है ना हमार जो खाद्यान्न है ओकर स्वाद है घटक जात है। तो
1: बढ़िया
2: ज्यादा से
1: बढ़िया।
2: ज्यादा जो है ना अगर हमन मन रासायनिक के छोड़ के जैविक खेती करो और अगर बढ़ावा देवो, तो उनमें हम हमर मन कर जो मुख्य रूप से खाए कर स्वाद कर साथ साथ सेहत भी बने रही है, मोर मानना है, यही हमार विचार करते। जोन किसान मन अभी भी जो है ना जैविक खेती करो और आगे बढ़िन है, उमन मन कर मार्गदर्शन बाकी किसान मन के भी मिले, और उमन भी जो है ना अपन खेत में जैविक खाद कर उपयोग करके खेत कर जैव उर्वरकता के बढ़ाए, साथ साथ जो है ना अपन जो सेहत है ओके भी बनाए और खाए कर स्वाद के भी जो है ना बनाए रखें, ये मोर मानना।
1: बहुत बढ़िया। और ये साल खातू वातू बढ़िया मिला है सोसाइटी से की?
2: खातू कर तो संकट रहे वाला है मानवरे साल, काबर की देखा थी हमन मन सोसाइटी मन में जाती तो मैं काफी कम मात्रा में खाद उपलब्ध होते है, जेवन 10 बोरी कर अपेक्षा रखत रहे नमन मन के लगभग 5 बोरी 4 बोरी ऐसे मिली लगत है। और वो अनुसार जो है ना सही भी हवे, काबर की हमन मन फ्री में भेटाए जात है कह के बहुत ज्यादा ज्यादा डालत भी रहन कहो।

0: ना, तो एकर से मैं मानू कि जो है ना हमारे जो जैविक खेती है, कुछ जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाए कर जो हमार यानी मन कर इच्छा हर खत्म होते सुबह फिर वापस आई कि हम ला अपन घरे कर जो कचरा वगैरह है, डस्ट जो व्यर्थ चीज है उनके सड़ाई गलाए कि अपन जैविक खाद घर में कुछ वर्मी कंपोस्ट बनाए कर जो मन अपन अंदर आई कि भाई ओके बनाए रखी ताकि हमारे जमीन में ओके डाले कर उपयोग करे कर जो है ना उपलब्ध रही करके। हाँ
1: बहुत बढ़िया अकल साहब जी। अच्छा अकल साहब जी एक बात और तो भाई बढ़िया किसानी, तो जैसे जैविक खातू डाले से माटी में का होते हैं?
0: हमर जो मिट्टी कर मृदा शक्ति है जो ओकर पौष्टिकता है पौधा के जो ओकर से उपजाऊ शक्ति बढ़े वो कर में जो है ना उपलब्ध रहे। बाकी पौधा कर में जो रोग वगैरह कर जो प्रकोप वो कम आये जैविक खातों कर माध्यम से। हालांकि देखब कि मिट्टी तो आज हमार बंजर हो जात है कठोर हो जात है धीरे धीरे ओकर उपजाऊ क्षमता घटत जात है। अगर खाद आज के डेट में रासायनिक खाद जिला हमन प्रयोग करत हन अगर वो ना डाली तो संभव नहीं है कि हमार खेती हर अच्छा हो पाही ऐसा आज कर मिट्टी के हमन बना चुके
1: लेकिन
0: हैं।
1: धीरे धीरे कम कर सकत हन।
0: हाँ अब वही तो धीरे धीरे हमन के ओकर में वर्मी कंपोस्ट बनाए के डाले कर यह ना जुगाड़ बनाए पर ही तब तो हर कम करत बन
1: अकल साहब जी जिसे वैज्ञानिक मन कहते हैं हरा खाद, कि
0: ही।
1: भाई
0: जी
1: कुछ भी बुने से पहले जैसे मान ले कि भाई चरोटे आ है चाहे कुछ भी
0: जी
1: लोबिया है, तो हरा खाद भी एक विकल्प है नहीं?
0: बहुत बढ़िया विकल्प है महोदय। अगर ओकर प्रयोग देखी अगर करी तो हमार जो जमीन है वो हर और तरोताजा हो जाए न्यूट्रिशन के मिल जाए कि भाई हमारे को
1: बढ़िया।
0: इतना बढ़िया चीज दे दें। अपना कर बहुत जरूरत है हरा
1: बिल्कुल
0: भरा।
1: बिल्कुल भाई, देखत हन कि हमारे स्वास्थ्य भी खराब होते हैं, पर्यावरण भी खराब
0: जी
1: होता है,
0: जी
1: और देखत हन कि भाई हमन रासायनिक जो दवा प्रयोग करत हन ओकर से कई तरह का हानिकारक प्रभाव होता
0: हानिकारक
1: है।
0: बीमारी जो उत्पन्न होते हैं।
1: तो ओकर से
0: जी
1: थोड़ा
0: जी
1: अब भाई विकास के मतलब ये थोड़े आ है कि भाई हमन अपन जीवन पे संकट ले ली, तो विकास का मतलब है कि भाई संतुलित विकास।
0: जी जी
1: कुछ देसी धान आहे रो तरफ जेकर नाम बताए सकी?
0: तो अभी कर स्थिति में तो अपन कति उपलब्ध नहीं है महोदय। मैं आपके किसान भाई मन बांटे हैं और जहाँ तक उपलब्ध है कि ओके बना बचाए के रखें और
1: बिल्कुल
0: कुछ ना कुछ हिस्सा में जरूर लगाए कहूँ कहना चाहूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, देसी धान कहें कि भाई ये जो हमन हाइब्रिड उगाथन तो हमें खर्चा भी ज्यादा है
0: जी
1: और पर्यावरण भी बिगड़ता है,
0: जी आज
1: तो
0: के डेट में देखिए हर घर का कोई एक सदस्य न एक सदस्य जो है ना बीपी शुगर ये सब कर परेशानी से जूझत है।
1: बिल्कुल
0: आजकल जो
1: बिल्कुल
0: है ना खाए बड़े उमला भले अनाज है लेकिन वाला खाए नहीं पा रहते है ना वाला
1: बढ़िया
0: खेल जो है ना खरीद के खाना पड़ता है उसमें चावल वगैरह वगैरह दवा
1: बढ़िया
0: वगैरह तो ओकर से बचे कर एक साधन है कि भाई हमन मन जो देसी किस्म कर उन्नत किस्म बीज भी सो मतलब बचाए रखी और एक दूसर से वाला हम समझा
1: बांट के
0: भी
1: आगे
0: करी।
1: बढ़ी। बिल्कुल,
0: जी।
1: तो अकल साहब जी बढ़िया खेती करे थे ना, तो अभी सिंचाई के क्या साधन रखें, जैसे खीरा में क्या चीज से पानी टेणत रहें?
0: सिंचाई कर अभी अपन जगह ट्यूबवेल वगैरह है तो ड्रिप स्प्रिंकलर कर माध्यम से उमन में पानी देवा थी। और अभी जोन खेती में देख पाता हूँ ड्रिप सिस्टम से करत हन वही हर अच्छा बढ़िया उत्पादन लेके आता है। बाकी इसी जो है ना सिंपल पटुआ में मिट्टी हर थोड़ा बैठ जाते और लिमिट में पानी नहीं पटे कर वजह से पौधा भी थोड़ा ग्रोथ रुक जाते और ओकर में उत्पादन क्षमता थोड़ा कम हो जाते। तो ड्रिप
1: ड्रिप पद्धति
0: स्प्रिंकलर कर
1: बढ़िया है।
0: माध्यम से मल्चिंग कर माध्यम से जो खेती हो
1: हाँ, जो नवा नवा
0: जी
1: तकनीक है
0: जी
1: वाला
0: जी
1: अपनाना जरूरी, तो ड्रिप लगाए हैं?
0: जी कुछ एरिया में ड्रिप लगाए हैं ना और अभी जो
1: अच्छा
0: खाली बची से उनमें भी अभी वाला सीजन में जो खेती लगत है उनमें लगत से ही। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी जैसे
0: जी
1: खीरा लगा रहे हैं तो हमें तो भाई ठीक चलीस काम, तो अभी
0: हाँ
1: जैसे बरसात में सेमी और जो बरसात कर सब्जी है वो लगा?
0: हाँ
1: अच्छा, ड्रिप सिंचाई से फायदा भी है कि भाई पौधा के जड़ तक पहुंचेल,
0: जड़ तक पहुंचेल खाद
1: पानी
0: उछलाई में समय लगे
1: भी कम लगेल,
0: पानी
1: कहें कि भाई पानी के भी
0: जी
1: संकट है।
0: पानी संकट है साथ।

0: ऐसा भाई व्यर्थ में पानी इधर उधर नहीं जाए।
1: बढ़िया खेती करत है ना अकल साहब जी, और जो है अमन के जैविक प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और देखिए जैविक जो हमन रासायनिक दवा प्रयोग करथन ओकर जगह जो है नीम नीम पताई नीम कर तेल और कई तरह के जो है हांडी दवा ब्रह्मास्त्र ये तरह के कई दवा भी बना के हमन प्रयोग कर सकथन।
0: हाँ, ओकर से बीमारी न केवल रुकेल बल्कि ओके रोग मुक्त भी करेल, ओकर में बीमारी फिर दोबारा अटैक भी नहीं करे
1: देखिए जीवामृत है घन जीवामृत है, एकर से खातु भी मिल जाते बढ़िया पौधा ला
0: पाते।
1: बढ़िया। तो जो है हमन बड़ा बढ़िया ने बताए कि जो कंपोस्ट है केचुआ है एकर से हमन जो खातु बनाई अपन तो बढ़िया बेटा जी। लेकिन जैविक खाद के बात करते ना कल सा जी, तो पशुपालन भी तो जरूरी है भाई, गोबर कहाँ से बेटा ही।
0: बहुत जरूरी है पशुपालन। अब देखिए डीजल के संकट ये वर्ष होए वाला है, तो आदमी में लाभास होता है कि हमन जगह अगर पशु रही तो हमन कर जो हल चलाए कर जो तकनीक छूटत रही, सो में एक एक्सरसाइज भी होत रही।
1: हाँ
0: आज नष्ट होत है पेड़ पौधा जो नष्ट होत है, ओकर से न तो शुद्ध हवा मिल पात है, न तो छाव मिलत है, न उतना अच्छा बरसात भी नहीं होत है। पेड़ पौधा अपन मेड़ में तो लगाना बहुत जरूरी है, हरियाली रखना बहुत जरूरी है, हमन मन के उपलब्ध नहीं हो पारत है। बाड़ी
1: तो भाई किसान है और जमीन है तो बाड़ी से लेके पूरा गांव में भाई
0: जी
1: पेड़
0: जी
1: पौधा
0: जी
1: लगाना जरूरी है, और
0: बहुत
1: सुरक्षा भी
0: जरूरी।
1: जरूरी है।
0: तो देखिए एक से एक तकनीक है, तो बहुत से किसान मल्ला अब देखिए कि जो है ना धान रोपाई में यानी मजदूर कर कमी के देखते हुए धुरिया बुने कर जो पिछला
1: हाँ
0: पद्धति रिसोला अपनाए लेन है,
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया एक बचाव है कि भाई मजदूर कर जो है ना खर्चा से बच जात हुए, और साथ जो है ना ओकर में उपज कर क्षमता भी बढ़ जात हुए। हाँ
1: अच्छा
0: एकर लेके भाई देखती कि हमन मन थरहा ला तो कर देती जल्दी फल दी, लेकिन अगर मजदूर नहीं मिले के बाद जो है ना हर समय पर नहीं लगे पारते। हाँ
1: ये साल मानसून उतना बढ़िया नहीं रही तो कम अवधि के
0: कम
1: धान भी
0: वर्षा,
1: लगाना जरूरी है कि कम अवधि में
0: हाँ
1: हो जाए।
0: कम अवधि में, हाँ कम पानी वाला ज्यादा चयन करें।
1: गोट बात हुई बहुत बढ़िया लगी, फिर गोट बात पर राउ के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपला भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान भाई आज सुनत रहें ने गोट बात ला, हमार किसान रहें अकल साय जी कुंदी खुर्द कर रवैया हैं। किसान भाई अब थोड़ा सा मंडी भाव के भी बात कर लेल जाए, और मंडी में आज जो धान रहीस और रहीस 2370 रुपया प्रति क्विंटल, मकई रहीस 2400 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ रहीस 2531 रुपया प्रति क्विंटल, महुआ रहीस 3000 रुपया प्रति क्विंटल, और सरसों रहीस 6000 रुपया प्रति क्विंटल। अब थोड़ा मौसम के भी बात हो जाए तो देखिए आजकल जो अधिकतम तापमान रहीस 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहीस 27 डिग्री सेल्सियस। कल के अनुमानित तापमान के बारे में बात करी तो कल कर जो अनुमानित तापमान है अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहकर अनुमाना है और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहकर अनुमाना है। तो किसान भाई ये तो रही इस मौसम के बात, और मैं कहता हूँ अब थोड़ा मनोरंजन के भी बात कर लिया जाए तो आइए गुट गीत सुनथन जो लगाता है विजय सिद्धार और उनकर संगतावन।

और एक साथ अब रावरमन से विदा लेकर समय हो गई से, तो रावरमन जग काल फिर भेटाबो, आ चल जाए, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया पर आधारित श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश।

इंस्टा फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो साथी रितिका। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं इंस्टा फरमाइश के गलियारे में और देखते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को लेकर के है।

कार्यक्रम इंस्ट्रा फरमाइश में अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन आरडी बर्मन का था और गीतकार हैं गुलजार। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा एवं हनुमान बोर्ड के, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े एवं स्वराज जमदाड़े, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल एवं नफीसा परवीन, मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा एवं वान्या सिंगरौल, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत एवं सीमा शाहू, सूर्यकांत राकेश, शुभम सावित्री, शिखा एवं सेफाली साहू, नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सेन, पुष्पा नितिन एवं जतिन सेन, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन एवं फातिमा सोगरा, सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता

निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, माफ कीजिएगा, ऋषिकेश एवं जीविका दले, पूनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका एवं विशाखा सोनवने, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी, शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी, महोबिया, अनय, अनाया एवं ईशु। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में लीजिए सुनिए अगला गीत, मनचली फिल्म से, आवाज़ है किशोर कुमार एवं लीना चंद्रावरकर।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अभी आप सुन रहे थे मंचली फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष, कुंदन, करीना, पूजा, आरती कुमारी एवं सुनीता। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश एवं शीतल राजेश। पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन एवं राजेंद्र शाह। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन एवं अपार डिंगिया। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी एवं दिशा गोस्वामी। ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह, सुधांशु एवं हिमांशु पाल। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित एवं तानिया नारंग। जिला जलाना मराठावाड़ा से सैयद यूनस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद नोयान, दशरथ सागुते एवं अनुष्का सागुते। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, सविता, स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं परिवार के सभी सदस्य। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगले गीत की फरमाइश की है हमारे श्रोता। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजक एवं मयंक भाटिया। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर एवं विविधा। सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज एवं मिथिलेश यादव।

आरोप फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। संगीत निर्देशन था भूपेन हजारिका का और गीतकार थे माया गोविंद। कार्यक्रम में हमने अगला गीत शामिल किया है आपकी कसम फिल्म से। आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश ढाकर, नाइमा रंजू बाई, युवराज सिंह एवं शिवांगी। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान एवं इरफान खान। डोंगड़ गांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का एवं तन्मय गजबिये। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइमा एवं मैंडी शर्मा। ग्राम पड़ौली पोस्ट धौरपुर विकास खंड लुंड्रा जिला सुरगुजा छत्तीसगढ़ से प्रथम, प्रफुल्ल, कैरव, गर्वी, अनुज, सुनैना दास एवं वेद कुमार।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में लीजिए सुनिए अगला गीत, स्वीकार किया मैंने, फिल्म से आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है उषा खन्ना का और गीतकार हैं निदा फाजली। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एवं शिवांश वर्मा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, गांव परांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार एवं पुष्पेंद्र कुमार डूडी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी हेमलता, हीना हर्षित एवं खुशी, गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनिता एवं राहुल भांबिस्टे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल वादी, हंसिका एवं अकिता जोशी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल एवं निशा, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम, पवन एवं संजीव डाबेराव, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन एवं अंकुश अरोड़ा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं गैम्बलर फिल्म का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, संगीत निर्देशन है SD बर्मन का और गीतकार हैं नीरज। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता गुजरात पाटन से धीरजवी रबारी, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन, इंद्राणी एवं माया साहू, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक एवं बलवीर सिंह, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश से ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल एवं देवांशी विश्वकर्मा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नावकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, सोपान तायडे एवं आशीष मुरहेकर, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली एवं आरती अरोड़ा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा एवं बिमला अनेजा,

सिद्धार्थनगर दरिया पर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप एवं अशोक येले। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना एवं आलिया अंसारी। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु विशाल लाड़ी, शालिनी एवं टिवांशी खेड़ा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अब लीजिए सुनिए हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत निर्देशन

है आरडी बर्मन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता एवं डिम्पल देवांगन, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल एवं रक्षिता लोखंडे, कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान एवं मुस्कान आसिफ, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गांवड़कर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन, टुकटुक, वैशाली, शैलेश, सुमित, कुमारी ध्वनि, परी, प्रिंस एवं एकांश गांवड़कर। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: है तो।
1: हाँ, कुछ कहा?
0: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए।
1: सच?

कार्यक्रम इंस्ट्रा फरमाइश की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अभी आप सुन रहे हैं रहना है तेरे दिल में फिल्म का ये सॉन्ग। आवाज़ है केके की, संगीत निर्देशन है हरीश जयराज का और गीतकार हैं समीर। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक एवं माही मलिक, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला, विशाल चेतन रोशनी एवं प्रियांशी मनवर। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। इसी के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो साथी रितिका को दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि की 8:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या एवं इवनिंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी

0: चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में

0: राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम

0: एक को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defence, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
3: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धा मल्ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ।

0: है नहीं बेरा हर ज्यादा लगे। मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
1: कौन कार्यक्रम ला?
0: ये दे किसान वाणी।
1: हाँ
0: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
1: हाँ
0: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
1: हाँ
0: तहाँ
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एलाएदे सुन सकते हैं।
0: हाँ अबे तो शुरू है कि सहे।
1: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाड़ी।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं यहाँ फिल्म का ये गीत। आवाज है शान और श्रेया घोषाल की, संगीत निर्देशन है शांतनु मोइत्रा का और गीतकार हैं गुलजार

0: यहाँ फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: ये उस दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन

0: सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है। आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
1: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
2: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल न उठे। इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है, या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
0: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुमित टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
3: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were...
4: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
3: Gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
0: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले, बल्कि जन

0: संचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
1: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
0: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
2: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहे तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
1: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
0: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
5: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने
6: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
1: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं।

0: है। संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़ जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे। तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
2: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी। हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार से मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
0: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को

0: अपनी आवाज दी और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ।
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना, ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
1: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से ने 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना, लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। कि खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
0: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है, और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने

0: पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
1: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
2: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
3: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई, जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
2: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
1: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
4: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत।

विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायोलिन पर Sri Saket Pantula.
1: Sri M.S.N. Murthy's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri M.S.N. Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N.C.H. Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिया राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkar.

था संन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति एंड ऑन द घटम बाय विद्वान श्री एम हरि बाबू। Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100

दिन पूरे हो गए हैं फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के दो ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।